0: फसल। FM बानवे इशारिया नौ और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: हज़रत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर, जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो? शेर अरब में। अरब शायरी जो थी उसमें क्या था? अरब शायरी उसमें अल्फाज को बहुत बारीक तरीके से बयान किया गया है। अरबी का एक मशहूर मिसरा है, इन शायरा दीवानुल अरब, इन शायरा दीवानुल अरब, माना क्या है कि शेर अरबों का दीवान है। दीवान का मतलब उनका रिकॉर्ड है, उनकी हिस्ट्री है। अरबी की तफसीरें आप पिछली कदीम कई सौ साल पुरानी देखें तो उसमें जब अल्फाज की वजाहत होती है तो शेरों पर शेर लिखे होते हैं। तफसीर कुर्तुबी देख लीजिए, तो जो कुर्तुबी की तफसीर है अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो एक वर्ड लाते हैं, वर्ड की एक्सप्लेनेशन शेरों से करते हैं कि फलां शायर ने इस लफ्ज को यूं इस्तेमाल किया, फलां ने यूं और यूं, और इसका माना ये बनता है। अब देखिए कि मैं भी जब आपको ये कराती तो शेर तो मैं नहीं लाती इसलिए कि आपने अरबी शायरी पढ़ी नहीं है, लेकिन रूट्स में जाके बात करते हैं कि इस लफ्ज का रूट क्या है। इसीलिए इसका तर्जुमा मैंने ओढ़नी की थी। ओढ़नी, ओढ़नी का मतलब क्या होता है? ऊपर ओढ़ने वाली चीज। इसका लफ्ज मैंने तर्जुमा दुपट्टे नहीं किया, आपको याद होगा, मैंने कोई कल्चर का लफ्ज नहीं यहां बोला। ओढ़नी ठीक है, आपके बहुत सकील उर्दू में शायद ओढ़नी दुपट्टे के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन ओढ़नी का लफ्जी माना क्या है? ओढ़ी जाने वाली चीज, चाहे वो कोई भी हो, उसे आप बुरका कहें, स्कार्फ कहें, दुपट्टा कहें, चादर कहें, जिससे छुपाया जाए। तो खिमार अरबों के, हाँ, अरब औरतों का अगर आप दौरे जाहिलियत की अरब औरतों का कल्चर देखें तो वो क्या करती थी कि सर का जो लिबास होता था उसको यहां से पहनकर, यानी सर ढांक कर, यानी इसमें तसव्वुर ही नहीं कि सर खोल दें, क्योंकि सर ढांकती, खिमार लफ्ज ही सर ढांकने वाले कपड़े का है, उसको ढांक कर फिर क्या करती, पीछे बांध देती थी। और गर्दन और जेवर और सीना, ये सब चूंकि औरत के जिस्म में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज ये उसका सामने का हिस्सा है, तो वो इसी को एक्सपोज करती थी। और आज भी आप देखें कि खवातीन अपनी खूबसूरती के लिए इसी फ्रंट पोर्शन को जाहिर करती। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये जो ओढ़ने वाली चीजें हैं इसको सर पे चीथड़ा ना रखो, बल्कि क्या करो, उसको लंबा करो और उसे सीने तक ले आओ। उसकी लेंथ कितनी हो, यहां दरअसल वो लेंथ बताई जा रही है कि एटलीस्ट ऊपर वाले ड्रेस की लेंथ कितनी हो, वरना कमीज तो पहना ही होता था, फिर तो उसके भी ओढ़ने की क्या जरूरत है। वो लेंथ बताई जाए, क्योंकि आज भी कई लड़कियां जैसे स्कार्फ लेती हैं तो बसा औकात उसी स्कार्फ का एक पल्लू लेके मुंह पे ले लेती हैं, वो मुंह तो ढका हुआ है और नीचे से सब सीना खुला हुआ है, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। नहीं, एक पल्लू उठाया और उसी से मुंह ढांक लिया और वो क्या हुआ, चलती जा रही और सीना सब नुमाया हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। उसमें स्कार्फ की लेंथ एटलीस्ट इतनी हो, या दुपट्टे या चादर जो भी आप उसको बोल रहे हैं लस, कि वो इस एरिया को, अच्छा जब खिमार ऊपर से आएगा तो गर्दन बीच में आ जाएगी। अच्छा, अब भी मैंने देखा कई लोग कैप्स पहन लेते हैं, यानी कई कल्चर्स में क्या करते हैं, वो लपेट के बाल बीच में किए, कैप डाली, कान भी नंगे हैं, जैसे सऊदी एयरलाइन की जो एयर होस्टेस वगैरह का आप ड्रेस अगर देखें तो वो बाजोकत यहां से थोड़ा सा गिराती है लेकिन गर्दन आगे से नंगी हो रही होती है। गर्दन भी जीनत में है और उसको ढांपना है। जैब जो है, ग्रिबान, ग्रिबान ये सारा हिस्सा है अगला। वला युब्दीन ज़ीनतहुन, और अपनी खूबसूरती जीनत जाहिर न करें, यानी पहले तो ढक लें, ढक के भी क्या ना जाहिर करें अपनी जीनत, इल्ला लिबूलतिहिन्न औ आबाएहिन्न औ आबाए बूलतिहिन्न, और ये सारे आगे रिश्ते। अब किसी को भी आपने परखना हो कि इसके सामने जाएंगे ना, क्योंकि बहुत सवाल है शौहर के दोस्तों के सामने क्या करना चाहिए, तो आप देख लीजिए यहां शौहर के दोस्तों का अगर कोई जिक्र है तो उनके सामने जीनत खोल लें, और अगर जिक्र नहीं है तो ढांपे। छुट्टी के बाद गाड़ी तक जाते हुए रास्ते में बाजार में आने वाली औरतों की नीम उरिया कपड़े और बेनियाजी से बाजार में जाना देखकर बहुत दिल दुखता है। कई दफा दिल चाहता है इन्हें कहूं कि मेरी बहन, अल्लाह ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, अपना जिस्म ढांप कर बाजार में आओ। ہمت نہیں پڑتی کہ برا مانے گی. اپنی ہی کلاس کی کچھ خواتین کو باریک لباس سے منع کیا تو برا مان گئیں. مشورہ دیں کہ کیا کریں، ان کو کیا کہنا چاہیے. یہ میرے ساتھ بھی یہ تجربہ کئی دفعہ ہوا ہے اور میں خود اس بات پہ بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں، کیونکہ کسی عورت کا ننگا ہونا ایسے ہی لگتا ہے خود ہو رہے ہیں، تو بہت مجھے وحشت ہوتی ہے. اس دفعہ جب میں جا رہی تھی اسلام آباد اسی ویکینڈ پہ، تو میرے قریب یہ دو خواتین تھی جو جن کے جسم بھی کافی بھاری تھے، کیونکہ جسم جب بھاری زیادہ ہوتا تو فگر زیادہ اور نمایاں ہو جاتے ہیں، زیادہ مشکل ہوتی. ان کے اسی طرح شارٹ ڈریس، ہاف سلیوز اور ٹائٹ ڈریس اور دوپٹے سے بے نیاز، بے نیاز سے مراد یہ کہ اگر ہے بھی تو کبھی ادھر گر رہا کبھی ادھر گر رہا. سوچتی رہی کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ چھوٹے سے کارڈ چھپوائے جائیں بس دو ورقہ، اور اس میں صرف سورت نور کی یہ آیت ایک طرف عربی میں اور ایک طرف ترجمہ ود ریفرنس، بس ایک پیغام آپ کے نام، نتھنگ ایلس. تو یہ چھپوانے والی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو جس کے بارے میں بھی آپ سمجھیں کہ آپ اس کو منہ سے بول کے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آسان طریقے سے اس کو کارڈ دے دیجیے، بہت خلوص کا میسج اس پر لکھ کر کہ آپ اس کو برا نہ مانیے. اور پھر وہ حدیث بھی تو یاد آنی چاہیے نا کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے دور میں پھر یہ چیز رہی نہیں تھی کہ آپ کی امت کی کوئی عورت ہو اور پھر وہ بے حجاب ہو، یا پھر وہ سطر سے بے نیاز ہو، یا وہ زینت کی نمائش کرے، امپاسبل. فرمایا لیکن وہ دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. ایک تو مردوں کے بارے میں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ظالم حکمران جو ہر ایک پہ برسائیں گے بغیر کسی تمیز کے. اور دوسرے وہ عورتیں کاسیاتن، آریاتن، مائلاتن، ممیلاتن. کاسیات کسوا کہتے ہیں کپڑے کو، لباس پہنے ہوئے. آریاتن ننگی، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی. مائلاتن مردوں کے مائل ہوں گی، ان کے جال میں گرفتار ہوں گی. ممیلاتن ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. لا يدخلن الجنة یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی. ولا

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Musicgi, Sochgi aur Aapki. Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

0: मुहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं। आइए सामईन सुनते हैं नाते रसूल मकबूल।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम बराए रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं आज की खबरें लेकर, आज की ताज़ा तरीन मुल्की हालात लेकर आपके साथ हैं। हमारे साथ हमारे थिंक टैंक से ये तुकीर हसन बुखारी शाह साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इस वक्त हमारे साथ बराए रास्त मौजूद हैं। शाह साहब, एक बार फिर आपको आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राजा फूल साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिसनर नाज़रीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और ये माह रबी अव्वल है और मिलाद है, नबी पाक सल्लम की पैदाइश का महीना है, सबको मुबारक हो। जी राजा साहब,
1: खैर मुबारक। शाह साहब, इसके प्रोग्राम हो चुके हैं, सारी मसाजिद में हो रहे हैं, सब अदारों में हो रहे हैं, ये प्रोग्राम हो चुके हैं, अभी भी जारी और सारी हैं। इसके अलावा शाह साहब, अब बजट की बातें जो हैं कम्यून्स में की जा रही हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है?
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے
4: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت

चीजें आगे पेश करनी चाहिए और उसके लिए दूसरी पार्टियों के लिए जो दूसरी पार्टियां वहां बैठी हुई हैं जो बिल्कुल उसकी मुखालफत करेगी कि ये कहां से ले आए इस किस्म की फौसले, तो उसको आयन को समझना चाहिए और वो आयन को बेस बनाकर उनको एक शट अप कॉल दे सकता है, उनको कह सकता है कि हमारा आयन क्या कह रहा है और आप क्या बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो अपने लोगों की प्रेजेंटेशन पेश करेगा। इस तरीके से उसके पांव मजबूत हो जाएंगे और वो अपनी बात जो है वो समझाने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप तनकीद बनाए तनकीद करना शुरू कर गए, बहस पे ऊपर बहस करना शुरू कर देंगे, उस बहस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उनको समझा सकें, तो वो बिल्कुल होगी। अब आपने जैसे बात की टैक्सियों की पार्किंग की, तो कोपेनहेगन में सबसे बड़ी जो चीज है वो है वहां पे मेजॉरिटी जो लोग रहते हैं वो है वर्कर, और उनमें ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, उनमें टैक्सी ड्राइवर भी हैं, बस ड्राइवर भी हैं, और बहुत सारे हैंड वर्कर जिनको हम कहते हैं मसलन हाथ से काम करने वाले मुंशी मजदूर और लोग हैं जो अपनी गाड़ियों में अपनी वाहनों में वो सफर करते हैं, उनके लिए पार्किंग की भी प्रॉब्लम है, सड़कों की भी प्रॉब्लम है, उनके उनके काम करने के औकात में जब वो जाते हैं मुख्तलिफ वक्त में वो ट्रैवल करते हैं तो उनको बड़ी दुश्वारी होती है कि वो राइट टाइम पे जो है वो किसी अपने एक मकाम पर पहुंच के वहां काम शुरू कर सके, और अगर वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पे उनको पार्किंग मिलनी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से दूसरी चीजें जो है, तो इसको इसके लिए जो काउंसलर हजरात हैं उनको चाहिए कि ऐसे वर्कर्स जैसे पुराने वक्तों में होता था कि जो वर्कर जो ऐसे किस्म के जैसे वीवीएस वर्कर है जिसके लिए कि बहुत जरूरी है, आपका बाथरूम खराब हो जाता है, टॉयलेट खराब, कोई चीज ऐसी हो जाती है, वीवीएस को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, आपके कोई विंडो टूट गया शीशे वाले को बुलाते हैं, तो उनके पास एक स्पेशल चिलैल से इजाजतनामा होना चाहिए ताकि वो जहां अपनी गाड़ी खड़ी करे, अगर वो गलत ऐसी जगह पे पार्क कर दी है जहां पे उसको जुर्माने का खतरा हो तो उसको जुर्माना ना लगाया जाए, क्योंकि वो एक काम करने के लिए आया है, एक मिशन पे आया है और वो अपना काम करके जा रहा है और लोगों को सहूलत देता है। तो गवर्नमेंट इन चीजों पे नहीं सोच रही, गवर्नमेंट जो है जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ एक ही रट लगा ली है, ख्वाह वो कम्यून हो या पार्लियामेंट, वो ये कहती है कि हमने यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन पैदा करनी है और इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा करनी है कि लोग मायूस हो जाएं, आपस में लड़ना शुरू कर दें, आपस में जो है वो आप देखें जब सड़कों पे आप जाते हैं लोग इतनी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं कि वो तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं, उनको बिल्कुल ये परवाह नहीं होती कि मेरा लाइसेंस चला जाएगा, मेरी गाड़ी जब्त हो जाएगी, मैं किसी को मार दूंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा या मुझे कोई मार देगा थोड़ी सी गलती से, कोई भी ऐसी चीज नहीं सोचता, बल्कि वो फ्रस्ट्रेशन में जा रहे होते हैं, फिर वो घर में जाते हैं तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने अगर वो शादीशुदा है तो बीवी बच्चों पे या अपने फैमिली पे निकालते हैं। तो ये चीजें जो है ये समझने के लिए सबसे पहले ये जो छोटी पार्लियामेंट जिसका आपने जिक्र किया है ये कम्यून होती है, और कम्यून का काम है कि वो इन लोगों को गोली है जिसको हम कहते हैं यानी कि सुकून की गोलियां दे, इनके लिए ऐसे प्रोग्राम लेके जाएं, ऐसी फोर्स लेके जाएं जो इनको अमन के रास्ते पे लेके जाएं तो ये खुशहार हो। अगर आप दुनिया भर की जो अखबारें हैं या दुनिया भर की जो मीडिया हैं या जो भी चीज है उसको अगर आप देखें तो उसमें लिखा जाता है कि डेनमार्क दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुशहाल मुल्क है, तो इसके इसके अलावा अगर आप देखें तो जो खुशहाल था उसको इन्होंने बदहाल कैसे कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी कोपेनहेगन कम्यून और दूसरी कम्यूनों से निकलती हैं, जहां पे वो सिर्फ अपने लॉबीज के लिए काम करते हैं और वो अपने लोगों के लिए अवाम के लिए काम नहीं करते, वो जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उन प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो डिबेट में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि ये कहते हैं कि ये तो हमारे हमारे मकसद की चीज नहीं, हम चले जाते हैं। देखिए आप मोस्टली काउंसलर से बात करें जो फॉरनर काउंसलर हैं तो वो ये कहेंगे जी हमें प्लाईएम चाहिए, हमें नमाज के लिए जगह चाहिए, हमें जो है वो जो है थोड़ी सी सहूलतें चाहिए, ये वो कभी ये नहीं कहेंगे
کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے سکولوں میں

0: जाना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी तालीम है, उनको स्कूलों के अंदर या कानूनों के बाद जब वो तीसरी चौथी या पांचवी क्लास में इस काबिल हो जाते हैं, बच्चे काबिल हो जाते हैं, उनको महीने में एक दफा यहाँ के आईन और यहाँ के कानून के बारे में वहां पे लोगों को दर्श देना चाहिए, उनको उनकी क्लास होनी चाहिए ताकि सब स्कूल वाले बच्चे जो हैं वो ये सुन सके कि डेनमार्क का कानून क्या है और यहाँ क्या क्या चीजें हैं, और बच्चे उसके ऊपर सवाल कर सके। जैसे कि ये करते हैं कि किसी फंक्शन के ऊपर पुलिस वाले अपनी गाड़ियां लेके चले जाते हैं, फायर ब्रिगेड वाले अपनी गाड़ियां लेके चले जाते हैं और बच्चों को अपना इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसी तरह अगर ये कानून के बारे में सियासतदान जाके उनके मुख्तलिफ सवालों के जवाब दें, उन मासूम लोगों को बताएं कि आपकी इस गलती से आपकी जिंदगी कैसे तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो वो बच्चे जो हैं वो अल्कोहल भी पीना छोड़ देंगे, वो ये जो अपना कैसीनो टाइप मशीनें लगी हुई है इनको खेलना छोड़ देंगे, रात को जो बाहर जाके वो 6-7 बजे के बाद वो प्रॉब्लम खड़ी करनी शुरू करती है, मेन स्टेशनों में चले जाते हैं, सेंटरों में चले जाते हैं और ग्रुप की शक्ल में लड़ाई झगड़े करते हैं, तो ये घरों में बैठ के अपने आप को चलने की बकायदा एक तरबियत होनी चाहिए। जैसे कि अभी पूरे यूरोप के अंदर है कि बच्चा जो है आप 15 साल से छोटी उम्र के बच्चों को किसी सूरत भी आप मोबाइल ना दें, इंटरनेट ना दें। हमारे लोग जो हैं घरों में चले जाएं तो वहां पे इंटरनेट ही इंटरनेट लगा होता है, टीवी लगा होता है, कार्टून्स लगे होते हैं, उससे बच्चा जो है वो खेलने से बाहर जाके मैदान में खेलने से बजाय अपने दोस्तों के साथ बात करने की बजाय वो उसी तरह अग्रेसिव हो जाता है जैसे कि वो एक कार्टून को देख रहा है या दूसरी चीजों को। तो जी राजा साहब,
1: शाह साहब आपने काफ़ी तफसील से बताया, सारी चीज़ों का अहाता किया। शाह साहब बहुत सारी सोसाइटियाँ बन जाती हैं, कमेटियाँ बन जाती हैं, सियासी जमातें बन जाती हैं, मजहबी अदारे बन जाते हैं, मसाजिद बन जाती हैं, तो शाह साहब लोग हर जगह डिवाइड हो जाते हैं। कभी कोई कहता है जी फलां जो मजहबी अदारा है उसकी मालकियत किसके पास है, लगता है कि वो सारे कहते हैं ये अवाम के हैं, ये सब लोगों के, सब लोगों का चंदा है। लोग कहते हैं जी महसूस होता है कि पता चलता है कि किसी फ्राम बरादरी की हुकूमत है इसमें, किसी फ्राम बरादरी की हुकूमत है। जहर है हर सिस्टम को जो है वो कमेटियाँ ही शाह साहब चलाती हैं। डेनमार्क का तो सिस्टम यही कहता है, कानून कायदा यही कहता है कि यहाँ सिस्टम से और कमेटियों से ही जो है वो सारा सिस्टम चलता है। लेकिन जो बाहर चंदा या वोट देने वाले बाहर आते हैं तो सारी जो आवाम जो है उसकी मेम्बर होती है, जो पेड मेम्बर होते हैं। असल में वोट डालने के हकदार तो वही होते हैं जो पेड मेम्बर होते हैं, जो एक क्लेम कर सकते हैं जी मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैं भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। लेकिन शाह साहब ये एक जहलीत होती है जो अच्छे काम को भी जी कहना शुरू कर देती है, जी फलाने कब्जा कर लिया, फलाने हुकूमत बना ली, फलां बरादरी इस पर काबूज है, तो शाह साहब ये भी एक जहलीत की निशानी है। जो काम करते हैं, खिदमत करते हैं, शाह साहब क्या मेंबर बन के ही खिदमत की जा सकती है? मेंबर बने बगैर भी तो खिदमत की जा सकती है। उसके अलावा शाह साहब सियासत की जब आप बात कर लेते हैं, पार्लियामेंट का आपने जिक्र किया, तो हमारे जो कानून कायदे बनते हैं वो तो कम्यून के अंदर बनते हैं, ऊपर जो पार्लियामेंट जो है जिसे फलके सिंह कहते हैं वो तो कानून की जो है वो डिबेट्स होती हैं, जब कानून तय आ जाते हैं तो फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं कम्यूनों में जाकर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो शाह साहब हम कोई सियासी इतजाज भी हमारे लोग नहीं करते, क्रिटिसाइज सिर्फ करना चाहते हैं, करना जानते हैं, जगह जगह आपको सड़कों पर सुराख मिलेंगे। शाह साहब ये वो मुल्क है, इसका बेसिक जो समझ आ रही है हमारा ये मुल्क जो है कि टैक्स होगा तो ये सहूलियात मिलेंगी, अस्पतालों में सहूलियात मिलती हैं, ये में यल्पा की सहूलियात मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट की जो मजदूरों की है उसकी सहूलियात मिलती है और भी बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं, ये सारा टैक्स से निज़ाम चलता है, अस्पतालों के अखराज होते हैं, तो इनकम जो होती है जो कहते हैं ज़र मुबादला होता है तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं टैक्स और बात पे। शाह साहब ये निज़ाम में आसानियाँ किस तरह पैदा की जाए? ये वही निज़ाम था जब आप लोग आए थे शुरू में, उस वक्त बहुत आसानियाँ थी, अब तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, तो लेकिन अब सख्तियाँ ज़्यादा हैं। जी शाह साहब,
0: जी आपने बिल्कुल राजा साहब दो सवाल किए हैं और दोनों के जवाब जो हैं वो ये है कि जब आप एक मस्जिद की या एक नमाज वाली जगह की आप बुनियाद रखते हैं तो वो अल्लाह का घर होता है, और अल्लाह के घर के अंदर जो है सफाई रखना जो है वो हर मुसलमान का फर्ज है, वह वो किसी भी फिरके से तलक रखता हो, किसी भी जमात से तलक रखता हो, वो आए हर मुसलमान का फर्ज है कि अल्लाह के घर को जो है उसमें ये कोई नहीं कि ये चौधरी है, ये शाह है, ये आगे जाके बैठेगा, मुझे पीछे बैठना है, ये फलाना गांव में इतनी इसकी हैसियत नहीं, ये हमसे आगे कैसे बैठ गया, इसने मसाला खरीदा हुआ है, ये इसके मसाले का नाम लिखा हुआ है, ये देखने में आता है। तो ये चीजें जो है अल्लाह के घर में नहीं होती, इससे जुआल पजीद होते हैं लोग। और ये कुरान मजीद की और सुन्नत की हदायत आया, इसके अंदर आप इसको इसकी वायलेशन नहीं कर सकते। सब लोग जो हैं, हर मस्जिद जो है, ना कोई मक्की मस्जिद है, ना कोई मदनी मस्जिद है, ना ही कोई शिया मस्जिद है, ना कोई मस्जिद, ये सब मस्जिद होने चाहिए अल्लाह के नाम पे। इसमें हर फिरके के बंदे को जब दिल चाहे, जहां जिस वक्त दिल चाहे, वो आकर अल्लाह के नाम की तलावत कर सकता है, कुरान शरीफ पढ़ सकता है, वहां पे अपना अपनी इबादत कर सकता है अल्लाह के हजूर में। देखिये बाजों का ऐसा होता है कि बाज इंसान जो होता है वो थोड़ा सा ना उम्मीद हो जाता है और वो चाहता है कि मैं अल्लाह से रजू करूं और अल्लाह के पास जाऊं। तो मस्जिद को हर वक्त खुला होना चाहिए, वहां पे जाके वो उलमा दीन से बात कर सकता है। और ये जो सवाल जवाब है, इनके जवाब दे रहे जो है जितने भी आलम हैं, मौलवी हैं, उनका उनका फर्ज बनता है कि वो उसको सेटिस्फाई करें। अगर उसके सवालात इतने बुरे भी हैं तो फिर उसके बावजूद भी उसको उसके सवालों के उसको जवाब दिया जाए ताकि वो मुतमिन हो सके। अल्लाह के घर में हर आदमी को वेलकम होना चाहिए। और यहाँ पे नहीं, दूसरा सवाल आपने किया, देखिए यहाँ पे हम लोगों में अभी तक 70 से लेकर 90 तक जब हम यहाँ थे तो हमें मैं नहीं थी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 2000 तक हमें मैं नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमें मैं आनी शुरू होगी और हमें रेस शुरू होगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा सरमाया कौन लगा रहा है, शादियां कौन कर रहा है इतनी बड़ी, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, कहाँ गाड़ी करनी है, किसके पास बड़ी गाड़ी है, किसके पास छोटी गाड़ी है, किसी तरीके से भी सरमाया आ रहा है तो उसको आना चाहिए। हमने, मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी 15% ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर रहते हुए भी अभी भी हलाल को एक साइड पे करके हराम को तजरी देते हैं। देखे हराम जो है वो सिर्फ उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी जिंदगी को इंतहाई खतरा हो। वहां पे आपको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इजाजत दे दी है कि आप अगर आप जिंदगी से हाथ धो बैठे के करीब हैं तो आप भूख से मर रहे हैं तो आप वहां थोड़ा सा सूअर खा लें, तो वो सिर्फ ये नहीं कि आप अपना पेट भर लें, सिर्फ ये कि आप सरवाइव कर जाए। इसी तरह से शराब या किसी दूसरी चीजें जो अल्लाह ताला ने खून वगैरह आराम किया है तो उससे अगर आपकी सर्वाइवल हो जाती है तो ये उसके लिए है। लेकिन फिर हमारे लोग जो है इसको परमानेंट अगर एक चीज बना लेते हैं जैसे कि दूसरी कौमों ने बनाया तो वो अल्लाह ताला ने मना किया है। अब आपका जो सवाल है उसके सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोगों के पास जिनके पास इल्म है उनको आगे नहीं लाया जाता, उनको बिल्कुल ही एक साइड पे कर दिया जाता है, उनकी उनसे सवाल जवाब नहीं किए जाते। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे मसाइल उठ खड़े होते हैं और ऐसे ऐसे मसाइल उठते हैं कि जिसका लोग जो है तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप ये देखें कि ये इस जमाने में भी हमारे लोग जो हैं वो नौज़ुबिल्लाह रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान तक के जो है वो सवाल जवाब करते हैं। और ये इनको इसलिए करते हैं कि इनके पास बुनियादी तालीम नहीं है, सिर्फ कुरान को पढ़ लेना जो है अरबी में उससे आपको समझ नहीं आती, आपको उसकी जो उर्दू जबान है या आपकी जो तुर्की जबान है, किसी भी जबान जो भी आपकी मादरी जबान है उसके अंदर आप उसको पढ़े तो आपके जो दिमाग है उसको वो हासिल कर लेगा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि हर बंदा जो है वो हिफ्ज कुरान नहीं हो सकता, हर आदमी जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर से दूसरी चीजों में नहीं जा सकता। ये चंद एक पासियत लोग होते हैं जिनके पास ये चीजें होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास शैतानी इल्म होता है। आप ये देखिएगा कि शैतान के पास इतना ज्यादा इब्लीस के पास इल्म था कि वो सातवें आसमान पे गया था, अल्लाह ताला ने उसको सातवें आसमान पे बुलाया था। तो लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इब्लीस के पास इब्लीस ने कोई अपना इल्म बनाया था, उसके पास जो भी इल्म था वो अल्लाह ने ही उसको अता किया था, जैसा कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अता किया। तो हमें कुरान मजीद से इल्म लेके और सुनते रसूल पे चलते हुए हमें चलना चाहिए, ना कि हम दुनिया की लिखी हुई किताबों को हम पढ़ के तो उनकी
1: तो
0: कहानियों पे हम
1: देखे ना, जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ कोई इस्लामी कानून नहीं है, ये इनका अपना जो आइन है या इनका अपना निज़ाम है, उस जिसके बारे में उलमा ने और संजीदा लोगों ने कहा है कि आपको इनकी बात माननी चाहिए, ये अल्लाह ताला का फरमान है कि जहाँ आप रहते हैं उस कानून कायदे का एहतराम करें। तो शाह साहब यहाँ एक जमहूरी निज़ाम है, यहाँ जो नज़र आता है अगर हम उस पर भी तनकीद करें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ को मना भी नहीं है तनकीद करना, लेकिन शाह साहब जमहूरी निज़ाम ही है ना, एक बना हुआ है कि एक के पास 9 वोटें होंगी, एक के पास 8 होंगी, 9 वाला जो है वो जीत जाएगा, चाहे जो कुछ भी हम मर्ज़ी कहते रहें, जो 9 वाला वोट वाला वही जीतेगा, ये है जमहूरियत, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। तो शाह साहब देखें, साल साल से बरतानिया बहुत एडवांस है, बहुत पहले लोग वहाँ आए, यहाँ डेनमार्क में 70, 71, 69 में लोग आए, अब तीसरी चौथी नस्ल जो है वो चल रही है। तो शाह साहब अब निज़ाम में तब्दीली होनी चाहिए, बंदे को खुद सीख जाना चाहिए। कल हमने देखा कि लोग कम कहते हैं कि डेमोस्ट्रेशन करना जमहूरी हक है, सियासी हक है, इजाज़त ली जाती है, डेमोस्ट्रेशन की जाती है। बरतानिया की एक खबर चल रही थी जिसमें सिर्फ मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि ये लोकल खबर बनती है, पाकिस्तानियों की खबर है, मुसलमानों की खबर है। तो शाह साहब इंग्लैंड जैसे जमहूरी मुल्क में रहते हुए अगर इजाज़त मिली है डेमोस्ट्रेशन करने की, कोई आदमी डेमोस्ट्रेशन कर रहा है उसकी क्लास कितनी होती है, कि डेमोस्ट्रेशन करने वाले की सोच कितनी है, वो पैसे लेकर डेमोस्ट्रेशन कर रहा है या खुद जमहूरी निज़ाम के लिए हक लेने के लिए कर रहा है। तो कुछ शाह साहब एक सैयद साहब हैं पढ़े लिखे हैं जिनका तल्लक ओवरसीज से है, उसकी वीडियो जो है वो काफ़ी वीडियो पर जो वायरल है, एक बंदा है जिसको बहुत सारे लोग जो है वो नापसंदीदा शख्सियत है बकौल लोगों के, दूसरी तरफ जो है एक पढ़े लिखे सैयद है जिनका तल्लक जो है ओवरसीज़ के साथ तल्लक है, और उनकी गालियों की पता नहीं वो असली वीडियो चल रही है या कि बनाई गई है गालियाँ वो दे रहे हैं। तो शाह साहब इन चीज़ों को जब हम बदला ही नहीं चाहते, हम ग़ुलामी से निकलना ही नहीं चाहते, 1400 साल पहले हमें ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया, हम सोसाइटियों के ग़ुलाम, तनजीमों के ग़ुलाम, सियासी जमातों के ग़ुलाम, अब अपने मुल्क की हुकूमतों के ग़ुलाम, जो हमें पोस्ट देता है हम उसके ग़ुलाम। जी शाह साहब
0: कि आपने बिल्कुल सही बात की है कि हमें आज़ाद पैदा किया गया था रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अपने नबूवत का, अपनी नबूवत का नहीं रसालत का, नबी तो वो पदाइशी थे, रसालत का आपने ऐलान किया 40 साल की उम्र के, कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी भी और रसूल भी हूँ। और रसूल वो होते हैं जो जो जो किताब लेके आते हैं, और अल्लाह की किताब और आपने आखिरत का, तो आपने सबसे पहले दो चीजें खत्म की थी, एक लॉन्डी खत्म की थी और एक गुलाम खत्म किया था। और आपने सबसे पहले, आपको पता है कि जो हमारे हबशी ने जिन्होंने अजान दी थी, मुझे रस्ता फारस भी उनका नाम जहन से एकदम निकल गया, तो उन्होंने ये चीजें जो है अल्लाह के रसूल ने उनको अपने पास से पैसे देकर आजाद कराया था। तो ये कहना कि जी इस्लाम है जी, वो बाद में शराबें हराम हुई और बाद में गुलाम जो है वो आस्ता लोगों को इस तरफ मोटिव किया गया और ये चीजें बाद में खत्म हुई, ये जहालत की सबसे बड़ी और ये दुश्मन के साथ मिलावट करने की और मिल जाने की सबसे बड़े सबूत है, जिसके अंदर इन्होंने हर एक चीज वो की जो सिर्फ हम कलमा पढ़ के बाकी हर वो काम कर रहे हैं जो कुरान मजीद के अल्लाह की दी हुई किताब जो हमारा ईमान होना चाहिए, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। आपने अभी बात की, मैं एक मुख्तसर ये चीज बताता हूँ। आपने कहा कि अंग्रेजों ने, इंग्लैंड बड़ा मॉडर्न था, 1942-43 की वॉर के बाद ये बिल्कुल खत्म हो गया था, डिमोलिश हो गया था। इसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरी बात की तायद करेंगे कि इनको लोगों की जरूरत थी, इनकी औरतें बहुत ज्यादा हो गई थी, फाहिशी बढ़ चुकी थी, मर्द बहुत कम थे, जंग में मारे जा चुके थे। तो इन्होंने क्या किया कि उस वक्त के हिंदुस्तान से इन्होंने शिप भर भर के, आप अभी भी लाइब्रेरी में जाके इनकी खबरें निकाल सकते हैं कि इंग्लैंड में जब वो जहाजों से उतरते थे, ख्वाह उनको पंजाबी आती थी, सिंधी आती थी, जो भी जुबान आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, उनको गोरिये पकड़ पकड़ के वेलकम कर रहे थे। तो इनके घरों को इनको बनाया गया, इनके मुल्क को जो है वो तहफ्फुज़ दिया गया। और आज इन्होंने उन्हीं लोगों को लेके तो हमारे मुल्क को जो है इसको गुलाम बना दिया। अब यह हमारा मुल्क ही वो मुल्क है جہاں سب سے زیادہ دین جو ہے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, سعودیہ میں چلے جائیں, عراق میں چلے جائیں, ایران میں چلے جائیں, قطر میں چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, آپ کو تین چار فرقے نظر آئیں گے. پاکستان وائز ایک ایسا ملک ہے اور انڈیا جہاں سب سے زیادہ فرقے جو ہیں وہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں, اور ایسے ایسے فرقے ہیں کہ جو ایک مسجد میں بھی پوری نہیں کر سکتے. تو مسجد کے ساتھ یہ انگریزوں کا پھلایا ہوا ہے. انگریز
1: چیزیں ڈنمارک میں بھی ہیں,
0: اب یہاں پہ آ رہی ہیں, یہاں پہ بالکل یہی سلسلہ یہاں چل رہا ہے. یہاں پہ یہ جب ہم ان لوگوں نے ہمیں لائے تھے تو اس وقت سب سے بیسٹ نیشن جو تھی ان کے حساب سے وہ مسلمان تھی, کیونکہ 57-58 میں یہاں انہوں نے یہودیوں کو اسرائیلیوں کو آباد کرنے کی کوشش کی تھی دوسرے ممالک سے, تو انہوں نے یہاں پہ وہی کرپشن کے اور دوسرے حالات پیدا کر دیے. یہاں پہ ہر چیز وغیرہ ہر ایک چیز ان کے ملک کے آئین کے خلاف چلنی شروع ہوگی.
1: تو پھر انہوں نے کیا کیا, بار بار ہم ذکر بھی کرتے رہتے ہیں شاہ صاحب, ہم ساری چیز آپ کو ہمیں یا دوسروں سب کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, غیبت کرنی گناہ ہے, تو شاہ صاحب یہ الزام ہم کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں ٹرمپ نے کہا کہ غیبت کیا کرو یا نتنیاہو نے کہا کہ, باقی ساری چیزیں ہم اٹھا کے ان کی طرف پھینک دیتے ہیں.
0: اس لیے کہ جو جب ہم حرام کھاتے ہیں تو ہمارے پاس علم نہیں ہوتا, تو پھر ہم محتاج ہو جاتے ہیں دوسرے کو خوش کرنے کے لیے, دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھ رہے, آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہیں, جب آپ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا پروگرام کرتے ہیں تو وہاں پہ کتنے مقررین آتے ہیں, کتنے بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں, کیا ان سے کوئی ایسی بات جو ہے کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو آگے چلے؟ نہیں, وہ وہی بات کرتے ہیں جو انہوں نے ان کے خلاف لکھی ہوئی کتابوں کی ہو یا ان کے بارے میں یا سنی سنائی بات کر کے کرتے ہیں. ڈنمارک کے اندر جو آئین ہے ابھی تک جو آئین ہے یہ وہ آئین ہے جس کے اندر انہوں نے 1952 میں تھوڑی سی جو ہے تبدیلی کی تھی, لیکن اس کے پہلے جو آئین ہے وہ عمر لاک کراتا اور یہ اب تک اس کو عمر لاک کہتے ہیں. یہ مسلمانوں کا ہے, یہاں پہ عورت سے لے کے بچے کے پیدا ہونے سے لے کے ہر ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے, اور یہی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قانون تھا اور یہ اسلام کا قانون تھا کہ جو سٹیٹ میں رہتا ہوگا, جو ہمارے ملکوں میں رہتا ہوگا, اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ ساری سپورٹ کرے گی, گورنمنٹ کے خزانے جو ہیں معلوم اس کے اندر سے پیسہ دیا جائے گا. اسی لیے تو بڑی بڑی سلطنتیں جو تھی روم
1: کی بات کر رہے ہیں
0: جی, ہر چیز جو ہے یہ سوشل سسٹم ہے ہی اسلام کا لایا ہوا, یہ بالکل گوروں کا نہیں نہ ان کا ہے. انہوں نے بشک ان سے ڈبیٹ کر کے دیکھ لیں, ان سے آپ کو آخر یہ مانیں گے کہ ہاں ہم نے جو میڈیکل ہے, ہاسپٹلائزیشن ہے, دوسری چیزیں یہ سب ہم نے اسلام سے سیکھی ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ کے قرآن کے اندر ہر چیز وہ ہے جو نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے, اب ہر چیز اس کے اندر ڈسکور ہے. حضرت آدم سے پہلے کیا تھا, حضرت آدم کے بعد کیا ہوا, دنیا کتنی دفعہ تباہ برباد ہوئی, نسلیں کتنی دفعہ تباہ برباد ہوئی. اب جو بندے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں, یہ قرآن کو نعوذ باللہ قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں. افریقہ میں جو قومیں بات ہوئی, مختلف ممالک میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, یہ سب مختلف قسم, چائنا, یہ مختلف قسم کی قومیں جو ہیں یہ اللہ تعالی نے پیدا کی, اللہ نے کہا ہو جاؤ تو ہوگی. تو اب یہ چیزیں ہیں جو یہ بیٹھ کے علماء دین جو قرآن کو سمجھتے ہیں.
1: ساری علمی گفتگو ہے اس پہ, تو جس کے پاس سٹڈی ہوگی وہی ان چیزوں کی بات کو سمجھے گا یا جواب دے گا. تو شاہ صاحب ہمارے پاس ابھی 5-2 منٹ رہتے ہیں, کہ یہ جو آنے والے پارلیمنٹ کے الیکشن یا کمیون کے الیکشن, یہ تو ایک چیز اسٹیبلش ہوگی کہ ہمارا سارا نظام جو ہے وہ کوپن ہیگن کمیون میں, ایلبرسٹ کمیون یا جتنی بھی ڈنمارک میں کمیونیں ہیں وہاں پڑا ہوا ہے. تو جب شاہ صاحب ہم خود ہی ان سے فائدہ سیاسی طریقے سے, جمہوری طریقے سے اٹھانا نہیں چاہتے, ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ شاہ صاحب ہم صرف گلہ کرنے کے لیے اس ملک میں آئے ہیں؟
0: نہیں, آپ نے صحیح بات کی. اس وقت ہمارے دو پاکستانی جو ہیں وہ ملک سکندر اور کاشف احمد جو ہیں, یہ بے شک ڈنمارک میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کے جو روٹس ہیں وہ پاکستانی ہیں, اور ان کو چاہیے کہ جو ہمارے لوگوں کی پرابلمس ہیں जो इस वक्त मेजर प्रॉब्लम है।
1: अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जो खबरें मिलती रहती हैं।
0: जी वो मैं भी उनको सुनता रहता हूँ, लेकिन बात असल में ये है कि उनको वो चीजें हाईलाइट करनी चाहिए जिनमें डेंचो को भी तकलीफ है और फॉरनर्स को भी तकलीफ है। ये इनको ये नरमी थोड़ी सी पैदा करनी चाहिए। अभी आप आज की बीटी खोल के देख लें तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 34% जो है, 34% जो है जितने भी यहाँ पे मर्डर्स अटेम्प्ट होते हैं कत्ल के, वो उसके अंदर फॉरनर्स शामिल है। अच्छा 34, और आप ये कह लें 35 कह लें, तो जो बाकी 65% है वो तो खुद यूरोपियन पीपल है या डेनिश है। तो इनको इतना बड़ा फसाद करना और इतना शोर गोल करना कि ये जी मुसलमान है, मुसलमान इतना कर रहे हैं, अब ये खुद मान रहे हैं कि 65% जो लोग हैं ये इनके अपने हैं और उनके ऊपर ये बात करें। इन्होंने यूक्रेन से बंदे यहाँ लाए, 66,000 से जायद जो यंगस्टर यहाँ पे आए हैं वो क्या कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं, उनमें से मेजोरिटी जो है वो
1: आपने जिक्र कर दिया। तो जो यूक्रेन के शहरी आए हैं यहाँ कर आबाद हुए हैं, तो इससे हमें क्या नुकसान हुआ, हमें क्या फायदा हुआ, डेनमार्क को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ?
0: देखिए जी, जब क्राइम रेट बढ़ता है तो उसके अंदर फिर फॉरनर फॉरनर ही होता है। वो आपको ये नहीं देखते कि आपके पास डेनिश नेशनल है या आप कौन है या क्या आपका रंग क्या है या कौन सा मतलब है, आप कहाँ से आए। उसके अंदर आप सबको एक ही वो गेहूं की जो चक्की में गेहूं पेसते हैं, उसके अंदर वो जो चीजें शामिल होती हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन कौन चल पिस रहा है। तो ये चीजें जब बनती हैं तो फिर इसके अंदर कानून को सख्त करने के लिए जब वो फौसले लेके आती है मुख्तलिफ पार्टी, तो उसके साथ हम सब पिसते हैं, जो हमारे अच्छे से अच्छे बच्चे हैं, जैसे माशाल्लाह आपके बेटे डॉक्टर्स वगैरह बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो पढ़े लिखे बड़े बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, आम आदमी को तो नहीं पता ये क्या काम कर रहा है, जब उसकी शक्ल देखेगा कहेगा ये भी एक क्रिमिनल है दूसरों की तरह। तो ये चीजें जो है हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि जैसे इंग्लैंड के अंदर है या फ्रांस के अंदर है या अपना जर्मनी के अंदर है कि जिस बंदे ने क्राइम किया है सिर्फ उसका नाम उसकी शक्ल दिखाई जाए, ना कि पूरी नेशन को जो है वो बदनाम किया जाए। तो ये फौसले जो है हमें चाहिए कि हमें अपने काउंसलर्स को कहना चाहिए कि ये कोपेनहेगन में इसका बिल पेश करें और इनको कहा जाए कि जो बंदा जाती तौर पे क्रिमिनल है उसके ऊपर उसको बनाया जाए, ना कि उसके पूरे खानदान को और पूरे माशरे को इससे रिलेटेड किया जाए। और ये डेनिश आइन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, डेनिश आइन कह रहा है कि इसके इसके
1: बिल्कुल क्लोजिंग के पास हैं। शाह साहब जरा आपकी तरफ सवाल को मैं लेकर चलता हूँ। आप जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरों को हकूक लेके देने की बात करते हैं, लेकर जो इसके लिए फाइट भी करते हैं, इसके लिए डिबेट में भी जाते हैं, पार्लियामेंट में भी जाते हैं, कम्यून में भी जाते हैं, लोकल तंजीमात में भी जाते हैं। तो शाह साहब आप एक जमात के बानियों में आपका शुमार होता है, आप अपना हक नहीं ले सके। इसी तरह एक बंदा 28 साल या 20 साल एक पार्टी का सदर रहा, वो अपना हकूक नहीं ले सकता। तो ना जमहूरियत की आप बात करते हैं तो ना हकूक की बात करते हैं, दोनों चीजें तो आप ये खुद नहीं ले सके।
0: देखिए जी, मैं आपको एक सीधी बात करता हूँ, ये जो मैं रेडियो पे आपको टाइम देता हूँ मैं ये आपकी वजह से देता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन मुहैया करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि आए मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करें, टैक्सियों के बारे में पूछे, कानून के बारे में पूछे, आइन के बारे में पूछे, तो मैं आपको सवाल देता हूँ, मैं उसकी तैयारी भी कर लेता हूँ। जिसकी चीज का मुझे पता नहीं, मैं कंप्यूटर खोल के मैं उसकी तैयारी उसी वक्त कर लेता हूँ, मैं समझ जाता हूँ उसको, डेनिश में भी पढ़ता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ, फिर उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ अपनी उर्दू जबान में, मैं उसमें भी फिर वो। तो राजा साहब ये चीजें जो है इससे आपका जो शक और शुबा होता है वो दूर हो जाता है। तो मैं जो अपनी चेयरमैनशिप है वो मैंने खुद इसलिए छोड़ा है कि जहां पे अगर कोई यंगस्टर को लोग कहते हैं जी हमारे यंगस्टर्स आएंगे तो वो बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये उसी जमहूरियत का मैं हिस्सा हूँ कि जो 70 से लेके 90 तक मिडल ऑफ 90s तक जो था यहाँ का माहौल बड़ा अमन पसंद था, तो वो उन्हीं बुजुर्गों के मेरे साथियों की वजह से था, मेरे कुलीगों की वजह से था। तो अब जो यंगस्टर्स आए हैं, जो यंगस्टर्स ने मैदान यहाँ पे खड़ा किया है, जो कार रेसिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पे بڑے بڑے فراڈ کر رہے ہیں ٹیکس کے ساتھ بھی اور دوسروں کا اور روزانہ اخباروں میں آیا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے وقتوں میں نہیں تھا, یہ چیز چند ایک تھے لیکن وہ ان کو رپورٹ کر دیا جاتا تھا, نکال دیا جاتا تھا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا تھا. لیکن اب جو ہے سبجیکٹ یہ بڑھ چکا ہے, تو اس کے اندر اگر کسی نے رسپیکٹ کرنی ہوتی تو وہ میری رسپیکٹ کرتے کہ بھائی یہ اتنا عرصہ سے اس کر رہا ہے, اس سے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اور جمہوریت اسی کا حصہ ہے کہ اگر کوئی گروپ آپ میں پیدا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب امام حسن کے لیے یہ سامنے آیا, نعوذ باللہ میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن جب ان کے اوپر برا وقت آیا کہ بھائی اب مسلمانوں نے ایک فرقہ نے جو ہے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے خلافت سے چھوڑنا تو میں چھوڑ دیتا ہوں, آپ خلیفہ بن جائے, تو جب آپ چھوڑیں گے تو خلافت پھر میرے پاس آ جائے گی. تو اس معاہدے کو بھی کینسل کر دیا گیا. تو یہی اب چیز ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک گروپ بنا لیا تو آپ اس گروپ کو میں سپورٹ کرتا ہوں, لیکن اس کو بھی ان کو بھی چاہیے کہ دوسروں کو, مجھے نہیں ہر گروپ کو یہ چاہیے کہ جو ان کے پرانے ہیں جو ان کے ساتھ لائل رہے ہیں جنہوں نے اصل میں یہ گروپ کا کریٹ کیا ہے, جیسے آپ کمیونٹی کے چیئرمین ہیں آپ کو شیلڈ دی گئی ہے خوشی کا موقع ہے, اسی طریقہ دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے ریکارڈ کرنا چاہیے, جلس نہیں ہونا چاہیے, فساد نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ جس وقت اللہ کو منظور ہوا تو سب کو دوسروں کو بھی مل جائے گی ہر چیز ہو جائے گی. جب آپ عوام میں پاپولر ہوتے ہیں تو پھر خود بخود امبیسی کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے کے پاؤں کہاں پہ اور کہاں یہ پاپولر ہے. تو راجہ صاحب میں تو یہی کہوں گا کہ جمہوریت وہ کرتا ہے, دیکھیں آپ جمہوریت کا حصہ ہیں, آپ کسی طریقے سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے, کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آپ کے ریڈیو کی آواز جو ہے آپ کی آواز جو ہے یہ ساری دنیا سنتی ہے, ایک کینیڈا سے لے کے نیوزی لینڈ تک لوگ اس کو انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں, لوگ ہر جگہ پاکستان میں لوگ سنتے ہیں, ہر جگہ سنتے ہیں جو سننے والا ہے. ایون آپ کے کچھ کلیگ تھے جو ڈاکٹر تھے رشیا میں اور دوسری جگہ پہ, وہ بھی آپ کے ساتھ ہم کلام بھی ہمارے ساتھ ریڈیو پہ ہوتے تھے, وہ بھی سنتے تھے اور سنتے ہیں لوگ. تو یہ جمہوریت ہے, جمہوریت یہ نہیں کہ آپ چند ایک اپنے لوگوں کو لے لیں اور انہیں کو بس بڑا بنا کر ہر چیز آگے رکھ دیں, بے شک ان کو کسی بات کا علم ہو یا نہ ہو, وہ جمہوریت ہی وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. جمہوریت یہی ہے کہ آپ عوام کے ساتھ,
1: اس سے پھر ثابت ہو گیا کبھی ہم آزاد نہیں ہیں.
0: دیکھیں ہم آزاد ضرور ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہی چاہتے ہیں کہ ہم آزاد نہ ہوں اور ہم غلاموں کی زندگی گزارے. لیکن وہ جیسے وہ خواجہ حسن بھی کہا تھا کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے, تو انسان کو اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے.
1: شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا, کافی لمبا ٹائم شاہ صاحب آپ نے دیا, آپ کا قیمتی ٹائم ہوتا ہے, بعض لوگوں نے آپ سے دم درود بھی کرانا ہوتا ہے مفت میں, جا سے پتہ ہے شاہ صاحب یہ دعا بھی مفت میں ملے نا تو وہ لوگ پھر لائنوں میں لگ جاتے ہیں.
0: جی دیکھیں سب کچھ اللہ دینے والا ہے, صرف آپ کی نیت صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ آپ کو کامیاب کرتا ہے. تو میری سب کے لیے یہ دعا ہے, میں آخر میں یہی کہوں گا کہ میلاد کے دن ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے, قرآن مجید کو پڑھیں, اپنی زبان میں پڑھیں, سمجھیں, گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں اس کی ٹرانسلیشن لگا لیں, پڑھیں نماز, اگر آپ ایک وقت نہیں پڑھ سکتے تو اس کو مجبوری وقت ہے تو آپ ان کو اکٹھی کر لیں, اکٹھی کر کے گھر جا کے پڑھ لیں, مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جا کے پڑھ لیں, لیکن فساد پیدا نہ کریں, غبیت نہ کریں, کیونکہ قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی سزا جو ہے وہ تین چیزوں کی ہے, ایک طلاق, ایک غبیت کرنے والی اور ایک کسی کا قتل کرنا. تو لہٰذا ان چیزوں سے جو ہے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو آپ دل میں کسی کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کی بھی وہی سزا ہے, کیونکہ آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے.
1: سامعین ناظرین یہ تھے سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب جن کو آپ سن رہے تھے. سامعین ناظرین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بھی صاحب کوئی بھی ہمارا لسنر بات کرنا چاہتا ہے جواب دینا چاہتا ہے اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ थी, प्रोग्राम रोकने पड़े। इस वक्त हमारे साथ कोपनहेगन पार्लियामेंट के मेंबर मलिक सिकंदर सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जनाब राजा साहेब, कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन, कम्युनिटी लीडर, अस्सलाम वालेकुम, और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं और उनको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम साहब, आपको सुन रहे हैं। सिकंदर, ये जो मैं जब कहता हूँ कोपनहेगन पार्लियामेंट, तो ये मैं सही कहता हूँ या कि मैं वैसे कह लेता हूँ?
2: देखिये, जाहिर बात है आपकी जिस तरह के पाकिस्तान में फेडरल सतह पे भी पार्लियामेंट होती है, प्रोविंशियल सतह पे भी पार्लियामेंट होती है, तो आप कह सकते हैं आप, बल्कि इसको अगर मोर सही कहना चाहे आप इसको कोपनहेगन असेंबली भी कह सकते हैं। ये असेंबली इकट्ठी होती है, तो आप जो जिस तरह आप मुनासिब समझे आप कह सकते हैं। इसमें कोई ऐसी आप गलत ऐसी कोई बात नहीं है।
1: चलें, बहुत शुक्रिया, आपने तस्दीक कर दी। सिकंदर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब बजट पेश हो रहा है, हमने आपको देखा कि आप बड़े एक्टिव हैं, बड़ी आपकी तजावीज़, जो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आप बड़ी जो तजावीज़ दे रहे हैं अपनी इस असेंबली के अंदर, और इस पर बड़ी आप बातें कर रहे हैं, ट्रैफिक के हवाले से भी, पार्किंग के हवाले से भी, बिजली की गाड़ियों के हवाले से भी, और जिन्होंने ज़्यादा गाड़ियाँ रखी उस हवाले से बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। बजट पर भी बहुत कुछ हो रहा है, और आप हमारे सामान्य नाज़रीन के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करें।
2: जी जी, जरूर, बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। इस वक्त जो है हमारी जो 27th of August था, उसमें जो बजट होता है ना, वो किक ऑफ आप कहने होता है, वो हम इकट्ठे होते हैं, वहां पे हम एक स्पीच करते हैं और वहां पे हम बताते हैं हमारी किस चीज पे फोकस होगा। सबसे पहली तो बात ये है कि ये हमारे लिए बड़ी खुशहाल बात है कि, और मैं समझता हूँ कि इस चीज की गवाही देती है कि हमारी पार्टी जो है वो कोपनहेगन असेंबली में इस तरह का काम कर दी है कि 8 महीनों में इतना फर्क आया है कि पहले जो है हम कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं थे, और आज हमें लॉर्ड मेयर जो है उन्होंने जो नेगोशिएशंस होनी है बजट के ऊपर, उसके लिए हमें दावत दी है, और हम जो है फ्राइडे के दिन भी नेगोशिएशंस में थे। नेगोशिएशंस का मतलब होता है कि लॉर्ड मेयर जो है वो फिर जब ये बजट बनाना होता है तो उसमें फिर ये उन पार्टीज को बुलाती हैं, बातचीत करती हैं जिनके साथ वो बजट बनाना चाहती हैं, तो हमें भी दावत दी गई है, और हम भी उस आप मजिस्ट्रेट सेल होता है, कमरा होता है जिसमें वो पार्टीज जो बजट का हिस्सा ये बनाना चाहते हैं, उनको साथ मिलाना चाहते हैं, वो वहां पे क्या कहते हैं शमूलियत करती है, वहां पे होती है। तो वो फ्राइडे के दिन बहुत लंबी मीटिंग थी, सुबह 9 बजे शुरू हुई और 5 बजे तक वो चली, और उस मीटिंग में जो मेयर थे डिफरेंट पार्टीज के वो थे, मैं अपने पार्टी की तरफ से मैं था, और इस तरह जो है लॉर्ड मेयर थी, और जो लॉर्ड मेयर के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं, जो इसके जो जो बड़े जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स आप कह लें वो थे, तो उस पर फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें यानी कि हर हाल में आपने करनी है, मतलब आपके पास एक बजट है, पैसा है, मखसूस पैसे हैं, उसके अंदर कुछ चीजें होती है वो हर हाल में आपने करनी है। मिसाल के तौर पर अब एक फ्लाई एम है वो बन रहा है या बनाना है, उसके लिए पैसे रहते हैं, इस पे इतनी बहस नहीं होती क्योंकि वो जाहिर बात है फिलहाल ये मैं बूढ़े हैं, मुझे रहना तो है, उन्होंने वो बनानी है, तो कुछ होती है जिसे हम कहते हैं नीड टू, हर हाल में करनी है, उस पे तो सारे मुत्तफिक होते हैं ठीक है इधर भी करें इधर, फिर उसके बाद कुछ पैसे बचते हैं बजट में, अब उसके ऊपर पे नेगोशिएशन होती है जहां पे हर पार्टी अपना जो है रखती है विशेष कि भाई मैं समझता हूँ कि ये पैसे इधर इस्तेमाल किए जाए, इधर किए जाए, उसके बाद फिर ये होता है कि नेगोशिएशन चलती है मंडे के रोज, अब फिर ये बकायदा चलेंगी, और उसमें हम भी अपने तरफ से जो चीजें हम चाहते हैं कि कोपनहेगन कम्यून करे उसके लिए हम रखेंगे, और इस तरह करते करते करते फिर नेगोशिएशन होती है, फिर अगर तो वो जो मतलब फिर जो लॉर्ड मेयर है उसने एक मेजोरिटी बनानी होती है जिसमें मेजोरिटी पार्टीज जो है वो इकट्ठे बन के साल का अगले साल का बजट बनाए। उसमें ये है कि मैं ये बताता चलूं कि हमारी तरफ से जो फ्री कॉइन की तरफ से हमने ये फोकस रखा हुआ है कि जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो कोपनहेगन में आम शहरी है, वो नहीं जिनके पास 10-10, 12-12 मिलियन के घर हैं, जो आम शहरी हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं है, हम उनकी आवाज इस बजट में बनेंगे और हम साथ लेके जाएंगे। और जाहिर बात है हमारी भी एक रेड लाइन है, उसमें अगर हमने ये देखा कि ये बजट जो है अगले साल का, ये हमारे लिए है, उन आम शहरियों के लिए जो उनके मसले मसाइल हैं उसको अगर ठीक नहीं करेगा तो फिर जो है हम जाहिर बात है इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अलबत्त इस वक्त हम उस नेगोशिएशन जो चल रही है उसका हम हिस्सा हैं। फ्राइडे के दिन हम आ गए हैं, मंडे को फिर हमने अब सुबह 9 बजे जाना है और अनलिमिटेड टाइम रखा गया है, वो फ्राइडे तक जो है ये मीटिंग चलेगी और फ्राइडे को बजट पेश होगा, उस पर अब ये देखते हैं कि हम उसका हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। और जाहिर बात है मैं हर बात इधर नहीं कर सकता क्योंकि ये एक एक एक गेम भी होती है, मतलब एक माइंड गेम भी होती है कि यहाँ मैं अगर हर चीज बता दूं कि हम क्या क्या लेके जा रहे हैं तो वो फिर पहले आप अपने कार्ड जो है वो दिखा देते हैं। तो ये बड़े तरीके से वहां अंदर बैठ के क्या आप करेंगे, किस तरह क्या माहौल बनता है, इसमें तो 3 चीजें देखने वाली है। एक तो ये चीज है कि मैंने आपको कहा हमारी कोशिश होगी जो लेबर क्लास है, जो आम तबका है, आम लोग जो है वो, और जो गरीब गुरबा है बिल्कुल, जो यंगलेस है जिनके पास बिल्कुल कुछ नहीं है वो, और माइनॉरिटीज वगैरह, इसके ऊपर हमारा फोकस इस साल मैंने मतलब अपने पार्टी के साथ ये मुंतखब किया कि हम उनकी आवाज बनेंगे। क्योंकि ये चीज बड़ी समझने की बात है, 123 ईयर्स जो है लॉर्ड मेयर की जो पोस्ट है वो सोशल डेमोक्रेट के पास रही है। इस बार पहली बार कोपेनहेगन की हिस्ट्री में 123 साल के बाद लॉर्ड मेयरशिप जो है वो गई है एसएफ के पास, और जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बनी है इनसलिस्ट, यानी कि ये एक लेफ्ट विंग हुकूमत कोपेनहेगन में इस वक्त बनी हुई है। तो अब अगर इसके बावजूद कि ये चेंजिंग आई है, लोगों ने इनको चांस दिया है, अगर ये भी लेबर पार्टीज का नहीं, लेबर क्लास का नहीं सोचेगी, आम तबके का नहीं सोचेगी, अगर ये गरीब गुरबे का नहीं सोचेगी, तो फिर इनको वोट देने का जो कोपेनहेगन के शहरियों ने सोशल डेमोक्रेट को 123 साल बाद हटाया उस पोस्ट से, फिर उसमें क्या फर्क है। कहने का मकसद ये है कि लोगों ने उनको सिर्फ नाम नहीं हटाए कुर्सियों से, उन्होंने वोट दिया कि जो पॉलिसीज हैं वो भी चेंज हो। अब देखें मैं आपको 1-2-4 चीजें बताऊंगा कि मैं आपको सिर्फ ज्यादा मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता नेगोशिएशन क्योंकि अभी चल रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे, अगर मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के हवाले से बताऊं, देखिए एक तो मैं समझता हूं कि मादरी जुबान जो है वो, अगर आप मुस्लिम कंट्री से हो, अगर आप अरबी हो, पाकिस्तानी हो, वो 7 साल के बाद आपने पैसे देने होते हैं तब आपको मिलती है। वो मेरे जहन में है कि वो हम एक डिमांड करेंगे कि 9th क्लास तक फ्री होनी चाहिए, जिस तरह की दूसरों की है। अगर यूक्रेन से कोई आता है तो उसकी फ्री है, नॉर्वे से कोई आता है उसकी फ्री है, फिनलैंड से कोई आता है उसकी फ्री है, फ्रांस से कोई आता है उसकी फ्री है। तो जो मुसलमान कंट्रीज है उनसे वो जो बच्चे हैं उनको पैसे देने, उनके माँ बाप को पैसे देने पड़ते हैं मादरी जुबान अगर पढ़नी है आपने 7वीं क्लास से और 9वीं क्लास तक, यानी कि 3 साल। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि जो जिस तरह के हमारा ओस्लो मेला होता है ओस्लो में 14 अगस्त के दिन, वहां हुकूमत जो है पैसे देती है, बकायदा एक मेला होता है, उस पर हर किस्म के लोग होते हैं। इनिशिएटिव तो ये पाकिस्तान डे की वजह से हुआ था। मैं चाहता हूं कि कोपेनहेगन जो है इसमें भी कोपेनहेगन मेले के नाम से क्या कहते हैं मेला हो, जहां पे ये बकायदा जो है इसके लिए फंड दिए जाए, ये भी मैंने एक चीज सोची हुई है। उसके अलावा मेरे जेहन में है कि जो हर साल आज तक आपको पता है कि बहुत सारी सर्वेज होती हैं, लेकिन जो माइनॉरिटीज के हवाले से जो रेसिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो होती है,

0: डिमांड वो पूरी नहीं करते। जो अब देखें पार्किंग का इतना मसला है, इतना मसला है कि मैं कहता हूं कि जो जिन लोगों ने, जो अमीर कोपेनहेगन में अक्सर जो लोग रहते हैं शहरों के अंदर, ये लोग जो हैं इनके लिए आप महंगाई करें, और जो आम आम बंदा है, जो आम इनकम वाला है, उसके लिए आप पार्किंग बनाएं, उसके लिए आप सस्ती करें पार्किंग। बल्कि तो इसलिए अभी अल्शानसी, उन्हें पता नहीं आपने देखा कि नहीं, उन्होंने भी नेगोशिएशन में जाने से पहले कहा है कि जो पार्किंग लाइसेंस होता है ना, जो आप देते हैं गाजी साहब, आप भी देते हैं, आप वैष्णो में रहते हैं, आपका भी एक पार्किंग लाइसेंस है, उसकी कीमत वो कहते हैं साल की 30,000 करोड़ होनी चाहिए, 30,000 करोड़। तो उस पे भी मैंने उनसे यही कहा कि देखें 30,000 करोड़ अमीर बंदा तो दे सकेगा, जो आम तबका है, आम आवाम है,
1: लेकिन
0: वो कहां से
1: पार्किंग
0: तीस
1: फिर
0: हजार
1: भी नहीं
0: करोड़
1: मिलती।
0: पार्किंग फिर भी नहीं मिलती। लेकिन आप अंदाजा लगाए, कहते हैं 30,000 आम बंदा कहां से देगा, ये तो आप सजा दे रहे हैं आम बंदे। गरीब जो अमीर आदमी है वो तो अपना कहेगा ठीक है 30 की तो 30 की ले लेते हैं, तो आम बंदा क्या करेगा, जो आम तनख्वाह ले रहा है, जो बस ड्राइवर है, जो सो सो असिस्टेंट है, जो गाड़ी चला रहा है, जो सफाई कर रहा है, जो आपके बूढ़ों का ख्याल रख रहा है, जो आपके बच्चों का फिरकों का ख्याल कर रहा है, वो कहाँ से ये पैसे देंगे। ये मैंने ये बात बड़ी वाजिया की है कि अब हमें वो इस चीज को चेंज करना चाहिए कि जो इस शहर को चलाते हैं, बूढ़ों का ख्याल रखते हैं, फिरकों का, बस चलाते हैं, सफाइयां करते हैं, ये लोग जो इस शहर को चला रहे हैं, ये शहर इतना महंगा हो गया कि वो आते हैं सुबह, या इस शहर को, इस शहर के पहिए जो है उसको चलाते हैं, और शाम को उनको वापस निकलना पड़ता है। वो इस क्योंकि इतना महंगाई हो गई है कोपेनहेगन में कि वो यहाँ रह नहीं सकते। तो मैंने इनसे यही कहा है कि अब मैं ज्यादा इससे ज्यादा तफसील में नहीं जा सकता, क्योंकि फिर आगे वो नेगोशिएशन होनी है, तो पहले ही मैं अगर सब कुछ बता दूं, कहने का मेरा मकसद ये है कि हम पॉजिटिव होके जा रहे हैं इस बजट में, लेकिन हमने अगर ये देखा कि दिस इज ओनली बिजनेस एज यूजुअल, जिस तरह हमेशा होता है इसी तरह होगा, तो फिर हमने ये भी सोचा हुआ है कि हम फिर इस बजट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और यकीनन जो लॉर्ड मेयर होगी, उसके वो पहली बार लॉर्ड मेयर बनी है, उसका ये पहला बजट है, उसकी यकीनन कोशिश होगी कि वो सब पार्टीज को लेके चले। लेकिन सब पार्टीज को लेके चलने का फिर मकसद ये होता है कि आपको आपको स्पेसिफिकली जो है किसी चीजों पे फोकस नहीं करना पड़ता, आप जिसे कहते हैं ना छरे नहीं मारते कि हर तरफ जो है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आम आवाम जो है उसकी हम आवाज बने। इस बजट में हम इस स्पिरिट के तहत जा रहे हैं और बड़े पॉजिटिव होके जा रहे हैं, लेकिन हमने ये बड़े वाजे अल्फाजों में ये तहिया भी किया हुआ है, फैसला भी किया हुआ है कि अगर ये बजट ऐसे ही होगा जैसे हर साल होता है, यानी कि जो आम आवाम है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर हम इस बजट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलबत्त ये अब अगले दिनों में अब देखे देखे
1: सिकंदर,
0: देखेंगे
1: आपने पार्किंग की बात की, ये जो बिल्डिंग्स होती हैं इसकी निशानदेही कर दूं कि आपको पता है कि जहाँ रिहायशी इलाका होता है, हर कोने में कोई ना कोई कैफे खुला होता है या कोई बार खुला होता है, तो लोग रात को 10 बजे तक बैठे रहते हैं, गाड़ियों पर आते हैं, उनको मुफ्त की पार्किंग मिल जाती है या पार्किंग करते हैं। जो लोग वहाँ रहने वाले होते हैं उन्हें पार्किंग मिलती नहीं है। मिसाल देता चलूँ कि पार्किंग मिली नहीं, बंदे को बड़े दूर जाके पार्किंग मिली, वो बंदा हैंडीकैप था, वापसी पे वहां अपने घर आया, टैक्सी पे बैठ के गाड़ी वहां खड़ी करके।
0: अंदाजा लगाए अभी कितनी जाती है, कितनी ये जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीजों को, इनको हल करना है। हम ये नहीं कहते कि हर पूरे शहर को पार्किंग बना दो, लेकिन हम कहते हैं कि इसमें अंदर को इंसानियत होनी चाहिए, कि जहां जो आम तबका है उसके लिए भी आसानियां होनी चाहिए, जो गाड़ी को यूज करते हैं उनके लिए भी आसानी होनी चाहिए। तो बहरहाल ये मैंने आपको ओवरऑल राजा साहब एक
1: चलें, ये
0: तस्वीर
1: आप
0: खींचने की कोशिश
1: हमेशा
0: की है।
1: मिसाल उठाते रहते हैं, बोलते भी हैं, आप दबंग बोलते हैं, मजबूत वॉइस है सिकंदर। इसके अलावा भी जो ज़ाहिर है बजट बनता है, कम्यून बनाती है, बजट जहाँ के लिए काम करते हैं, स्कूलों के लिए, स्कूलों के बच्चों के लिए, और भी बहुत सारे मिसाल सड़कों के मिसाइल होते हैं। ये जो उन्होंने पास सिस्टम शुरू किया हुआ है, बंदा हैंडीकैप है उस साल का पास है, वो पता नहीं कितने का बनता है, आप नहाने के लिए जाते हैं तो फ्री चीज़ें, जो वही इंग्लैंड है या स्वीडन जाकर देखें तो पैसा तो उसी तरह का, बसें खाली जा रही हैं, लेकिन आपने हैंडीकैप ने जो पैसे देने हैं उस पास के देने हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंदा आसानी से कर सकता है, लेकिन हर चीज़ में ये चीज़ को मुश्किल पैदा करते हैं।
0: देखिए ये अब आपने कर दिया, मेरा बिल्कुल यकीन करें, दिल नहीं कर रहा था कि मैं हर बार बताऊं वो, क्योंकि वही बात होगी ना कि ये कब फिर आप होता है ना, और भी लोग सुनते हैं पार्टीज के, वो जाके पहले बता दे कि इसके अंदर ये डिमांड लेके आएगा, तो वो पहले जो है ना ये आपके वो कार्ड्स होते हैं वो आपको प्ले नहीं करने चाहिए। लेकिन आपने बात की तो एक बात जरूर करूंगा, मैंने पुशेद नुछेद बनवाया है, मैंने कम्यून के जो जो क्लर्क है इनसे मैंने ये बात की है, जो फवेल्डिंग है, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि अगर कोपेनहेगन की हद में जित

0: जितनी भी खौलेगती ट्रैफिक है, बस मेट्रो, ये अगर फ्री काट दी जाए तो उसमें कोपनहेगन का कम्यून के ऊपर कितना खर्चा आएगा? और ये अभी किसी के पास नहीं है ये फिगर, ये सिर्फ मेरे पास इस वक्त मेरे ईमेल पे पड़े हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, 70 मिलियन करोड़, सिर्फ 70 मिलियन करोड़ जो है अगर कम्यून इन्वेस्ट करे तो जितनी भी बस मेट्रो जो भी कॉलेक्टिव ट्रैफिक है हर बंदे के लिए फ्री हो सकती है। और मेरा सवाल ये बनता है कि ये कितने बड़े शहरों में ये इस वक्त हो रहा है, कोपनहेगन में इतना महंगा क्यों है बस में बैठना, मेट्रो में बैठना, इन्होंने इतना महंगा क्यों रहा? अगर ये कहते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो ज्यादा हैं, उसको खत्म किया जाए, कम किया जाए, तो फिर ये आसानी क्यों नहीं पैदा करते? ये भी एक मैंने इसे कहते हैं पिशेतनुच्छेद, जब आप वहां जाके कहते हैं ना ये मेरी विश है, ये हम करना चाहते हैं, उसके लिए आपने पहले एक पिशेतनुच्छेद बनाया होता है जो आप सामने रखते हैं, कहते हैं हम मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं बसेस फ्री हों कोपनहेगन में, तो कहते हैं अच्छा बताएं, तो फिर हम कहते हैं ये हमारा पिशेतनुच्छेद है, इसमें लिखा होता है कि अगर हम करते हैं तो इस साल इतने पैसे लगेंगे, सारे एक फॉर्मूला उन्होंने बनाया होता है, उसमें आखिर में लिखा होता है 70 मिलियन करोड़ में ये होगा। इसी तरह मैं आपको और चीज बताता हूँ, ये ऐसा क्यों है कि आपको पता है कि इस वक्त कोपनहेगन में 4,800 बच्चा जो है वो गरीबी में रह रहा है, मतलब जिसे डेनमार्क की डिफिनेशन है गरीबी की, मैं ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मैं ऑफिशियल डिफिनेशन बना रहा हूँ बता रहा हूँ, जो डिफिनेशन है गरीबी की उसके बिलो उसके नीचे रहने हैं 4,800 बच्चे। आपको पता है कि जो 3 लाख के दरमियान डेनमार्क में एक बार हफ्ते में खाने के बगैर सोते हैं, पैसे नहीं पूरे होते, आपको पता है ये नई रिपोर्ट अभी आई है। तो मेरा ये सवाल बनता है कि हम क्यों नहीं अपने बच्चों को 0 क्लास से 9th क्लास तक बच्चों को हम स्कूल में क्यों नहीं खाना देते, ताकि हर बच्चे को दिन में जो एक 10 बजे खाना मिलता है और एक 11 बजे मिलता है, वो खाना जो है अच्छा हेल्दी ऑर्गेनिक खाना हर बच्चे को मिले, ताकि ये ना हो कि आप अगर गरीब घर से हैं या आप उनमें से बच्चे हैं तो आपका खाना अच्छा नहीं है। और जो बड़ी बड़ी यहाँ पे आप पता है ना, कोपनहेगन एक अमीरों का शहर हो गया है, इसमें अक्सर अब अमीर लोग रहते हैं, तो इसमें जो है उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो वेलफेयर स्टेट होती है उसमें ये चीजें होती हैं, पहले तो डेनमार्क में होती थी। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर इनस्लेशन और एसएफ जिन्होंने अब लीडरशिप संभाली है कोपनहेगन में 123 साल के बाद, अगर उन्होंने भी वही करना है जो पहले 100 साल में हो रहा है, तो फिर इनको चेंज करने का फिर क्या मकसद हुआ? फिर बेहतर यही था सोशल डेमोक्रेट लॉर्डशिप पे बैठे रहे, लॉर्ड मेयर शिप पे बैठे रहते। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लेके अभी जा रहे हैं, और मैंने वहां पे वाज अल्फाजों में कहा है अगर तो आपने बिजनेस एज यूजुअल ही करना है जैसे हमेशा करते हैं, फिर हम इस बजट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर आम बंदे को फर्क नहीं महसूस होगा छिंगप्या में कितने मसले मसाइल हैं, अगर आप वहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम इस बजट का हिस्सा नहीं बनेंगे।
1: सिकंदर, ये जो दांतों वाला माफिया है, इनकों वाला माफिया है, ये तो एक बहुत बड़ा देखिए ना कारोबार और अखराजात होते हैं। देखें बाकी अगर कम्यून सहूलत देती है, आपने फॉर्म फिल करने ब्ला ब्ला ब्ला करके इतना आपका पेपर वर्क होता है, मुलाजम रखने पड़ते हैं, जब ये सारी सहूलियात अस्पताल में फ्री हैं तो इसको फ्री क्यों ना कर दिया जाए?
0: मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मुझे ना एक बंदे ने एक वक्त एक बात की थी, आज तक मेरे दिल को ना वो और दिमाग को स्ट्राइक करती है। हम बैठे हुए ना हम इस पे बात कर रहे, कहता है आप लोगों ने कभी सोचा है कि आपकी टांग टूट जाए तो वो हॉस्पिटल फ्री होता है, आप जाके उसी वक्त इलाज करा के आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका दांत टूट जाए तो वो फ्री नहीं होता, आपने कभी ये नोट किया इससे क्यों है? तो वहां पे हम बैठे हुए दो चार लोग, हमने कहा नहीं क्यों? कहते हैं कि उस सरमायादार जो था ना उसको पता था कि अगर इस बंदे की टांग टूट जाएगी ना तो ये फैक्ट्री में आके काम नहीं कर सकेगा, इसकी टांग ठीक करवाओ, इसको वापस फैक्ट्री में आके लेबर काम करे, दांत टूटेगा वो तब भी लेबर आके क्या कहते हैं फैक्ट्री में काम कर सकती है। तो सरमायादार जो है ना उसने उस पर जी आता हूँ जी, तो उस वक्त जो है कितनी कितनी
1: बड़ी जबरदस्त बात है सिकंदर, इन चीजों को आप उठाएं, चीज देखें, ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क डेफिनेट ये टैक्स पे चलता है, टैक्स होना चाहिए, टैक्स इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन टैक्स जो है अमीर तबके से लेना चाहिए। एक पेंशनिस्ट है उसको कितनी पेंशन मिलती है, वो सारा दिन दफ्तरों के चक्कर लगाता रहे सहूलियात लेने के लिए।
0: मैं आपकी बात से 100% अग्री करता हूँ, ये जो हमारा इस वक्त सिस्टम बना हुआ है ये बहुत गलत बना हुआ है, जो मल्टी बिग मल्टी कॉरपोरेशन हैं वो जीरो टैक्स दे रही हैं, आम आवाम जो है इसको ये खून चूस चूस के चूस रहे हैं, لوگوں کا جو ہے جینا حرام ہوا ہے, کرائے دیے نہیں جاتے, کھانے جو ہے مہنگائی ہوئی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور اسی لیے میں نے یہ بات کہی تھی شروع میں, ہم اس بجٹ کا حصہ صرف تب بنیں گے جب عام عوام اور جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے اگر اس میں بجٹ میں بہتری آئے گی تو ہم بنیں گے, نہیں تو ہم کلیئرلی ان کو اپوزیشن, ہم ان کی اپوزیشن بنیں گے. کیونکہ اگر یہ ہمیشہ ایز یوزل کی طرح کام کرتے رہیں گے, عام بندے کو فرق نہیں پڑے گا, عام بچے کو فرق نہیں پڑے گا, پھر ہم اس پیپر پہ سائن نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ راج صاحب.
1: چنگ اسکندر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا.
0: تھینک
1: یو. سامع ناظرین, یہ تھے مل اسکندر جو کہ کوپن ہیگن پارلیمنٹ کے ایک ممبر ہیں. وہ بتا رہے تھے ان کا بجٹ جو ہے ڈیبیٹ چل رہی ہیں, اگلے ہفتے جو ہے کافی پاورفل ڈیبیٹ ہوگی, کافی لمبی ڈیبیٹ ہوگی. گو انہوں نے کوئی ایسی چیز تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن تجاویز لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت ساری تجاویز ہیں جنہوں نے جا کر ڈیبیٹ میں حصہ لینا ہے. ظاہر ہے باقی کے معاملات بھی تھے, جو ایک شہری کی تکلیف ہے وہ دوسرے کی بھی اتنی ہی تکلیف ہے, لیکن اگر دوسرے کی تکلیف کو کوئی پارٹی محسوس نہیں کرتی تو پھر ووٹر سپورٹر کو خود بھی سوچنا چاہیے. یہ جمہوری ملک ہے, آپ آزاد ہیں, آپ کو ووٹ دینے کا جس کو چاہے آپ ووٹ دے سکتے ہیں, ووٹ دینے میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جو لوگ اینٹی معذور ہیں ان کو سہولیات ملنی چاہیے. یہ جو فری ٹریفک ہوتی ہے اس کا آپ کو چار چار گھنٹے اسپتالوں میں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑتا ہے, گاڑی ابھی آئی نہیں, ٹریفک راستے میں رش ہے, بارہ بارہ بندے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, بارہ جگہوں پر چھوڑنا ہوتا ہے. تو یہ پیسہ جو بچانے کا ایک طریقہ ہے, بنانے کا طریقہ ہے, یہ کن کے حوالے کیا گیا ہے؟ یہ اس بات سے جو ہے ہم سب سے بالا تارے ہیں کہ حکومتیں, ہر حکومت سہولیات دینا چاہتی ہے, لیکن اس کے اندر کون شامل ہوتا ہے جو سہولیات دینے میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ اس پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: नाज़रीन, ये मिला जुला आपकी आवाज का बराह रास्त प्रोग्राम है, 7:17 हुआ चाहते हैं। समझना, आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि कल हमारी जब पार्लियामेंटेरियन कोपेनहेगन के मलिक सिकंदर सदीक से बात हो रही थी तो बजट की बातें चल रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाजे हो रही थी लेकिन खुलकर नहीं आ रही थी। तो आज ब्रेकिंग न्यूज़ लेते हैं मलिक सिकंदर से कि आज क्या हुआ और आपकी जो तस्वीर अभी मीडिया में आ रहा है क्या हो रहा है। सिकंदर, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत थैंक यू।
1: सिकंदर, ये क्या खबर है आज सुना है बजट से आप वाक कर गए हैं या निकल गए हैं या आपने बाइक काट किया, ये कहानी क्या है?
2: जी मैंने जिस तरह के जितने भी हमारे सामाईन हैं उनको मैंने जो कि रेडियो पे मैं जब पिछले दिनों संडे के दिनों बोल रहा था, तो इसी तरह मैंने जो 27 अगस्त तो पार्लियामेंट के अंदर सेशन था उसमें भी मैंने तकरीर में यही बोला और फेसबुक पे हर जगह मैंने एक ही बात की कि हम इस बजट में, हमें लॉर्ड मेयर ने इनवाइट किया, हम जाएंगे, हम इसको बड़े कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखेंगे और अपना बेहतर से बेहतर जो है इसमें हम डालने की अपना हिस्सा कोशिश करेंगे। और मैंने साथ ये भी क्लियर वाजे अल्फाजों में कहा था कि हम सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए या क्या उसे कहते हैं अपनी जेबें नहीं अपनी वो जो क्या उसे कहते हैं अपने वो एक पार्टियों के साथ इतिहाद करने के लिए हम किसी बजट को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि अब 120 साल बाद जो है नई हकूमत आई है जिसमें इनस लिस्ट नगरी खेल मिनिस्टर और SF जो है ये मेजोरिटी पार्टीज हैं कोपेनहेगन में, तो हम उम्मीद करते हैं और ये बल्कि एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो कोपेनहेगन का 50 मिलियन खूना का जो बजट है वो हमेशा की तरह फजूल चीजों पे बात मन नहीं लगेगा, वो पहले हमारे वेलफेयर पे लगेगा, बच्चों पे लगेगा, बूढ़ों पे लगेगा, स्कूलों पे लगेगा, जो सबसे मुश्किल हालात में यमलूस उन पे लगेगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही मैंने आपसे भी बात की थी उस दिन और अब हम 3 दिनों से नेगोशिएशन कर रहे थे, बातचीत चल रही थी जिसमें सारी पार्टी की आदत लीडर्स और लॉर्ड मेयर और जो जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के जिनके ऑफिसर्स हैं बड़े वो सारे मौजूद हैं। फ्राइडे के दिन हमने शुरू किया, सुबह 9 बजे शुरू किया, 5 बजे तक चला, फिर कल रात को जो है मेरे ख्याल से कल जो है कोई इसी तरह को 12 घंटे जो है चला, आज भी चला। तो आज जो है इस पे बहस चल रही थी तो हमने आज वहां वॉकआउट कर दिया और हमने कहा कि हम अब मजीद इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि
1: तो
2: ये जो
1: पहले तो कंजर्वेटिव वाले भी निकल गए थे कल ना।
2: हाँ जी, कल कंजर्वेटिव पार्टी है, उन्होंने कल ही उन्होंने कह दिया कि हम इस हिस्सा नहीं बन सकते, उनको पार्किंग के ऊपर इश्यूज आ रहे थे तो हमने बहरहाल क्या कहते हैं उस पे कॉम्प्रोमाइज किया और कहा चले ठीक है अगर आप मजीद बच्चों के लिए सबके लिए बेहतर करते हैं तो फिर अगर आप सिर्फ 50 या 80 जो पार्किंग एक्स्ट्रा बनाते हैं तो हम उसको देखेंगे अभी फुल पैकेज को क्या बनता है। तो बहरहाल हम आज भी गए और आज भी हमने वहां पे यही बात की और देखें अजीबो गरीब, मैं अभी मुकम्मल जो है अभी लिस्ट मेरे पास है नहीं, जब ये अभी बजट बनेगा तो मैं आपको मुकम्मल लिस्ट दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ ये पैसे लगा रहे हैं। और हमने इनसे ये कहा कि देखें हमारी अव्वल प्रायोरिटी ये है कि जो आम वर्कर है, लेबर जो है हमारी कोपेनहेगन की, जो आम बच्चा है, आम आवाम है, इस बार बजट का बड़ा हिस्सा उनके लिए जाना चाहिए। और इस पे फिर बहुत बहस चली है, अब उधर ये नेगोशिएशन होती है ना, बड़ा लंबा टेबल होता है उसपे सारे पार्टी लीडर्स और उनके साथ एक दो जो उनके एडवाइजर वगैरह होते हैं या उनके जो मेंबर होते हैं वो बैठे होते हैं। मैं लॉर्ड मेयर के साथ, जो लॉर्ड मेयर की टीम थी उसके साथ मैं बैठा हुआ था, इस तरह सब पार्टियां लंबा टेबल होता है, हम सारे बैठे होते हैं उसमें, फिर बहस चलती है और डिबेट होती है और उसपे तो हमने
1: का क्या रोल था
2: देखे, होता ये है कि जो ये एक कानून है कि जब जो ये जो नेगोशिएशन चल रही होती है ना, जो कमरे के अंदर बात होती है वो आप बाहर नहीं कर सकते। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने वहां क्या बात की, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि दूसरे बंदे ने क्या बात की। लेकिन इसलिए मैं ये आपसे कहूंगा कि हमने वहां पे कहा कि जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री खाना मिलना चाहिए स्कूलों में। हमने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री होनी चाहिए। हमने कहा कि जो इस वक्त हमारे मुआशरे के सबसे मुश्किल हालात में जो लोग हैं, जो जिनके जो बेघर है, जो यमलूस है, वो इन सर्दियों में बहुत बड़ा इशू रहा है। रात को जगह नहीं होती तो वो ठटरते हैं और रातों को उनको सर्दियों में बाहर गुजारनी पड़ती है। तो हमने कहा यार कोपेनहेगन इतनी रिच एक कम्यून है, उनके लिए गारंटी होनी चाहिए कि उनके पास शेल्टर हो, जगह हो, यानी कि घर हो जिसका शेल्टर होता है, उसमें वो जाके रात अगर ठंड हो तो वो गुजार सके। इसी तरह हमने कहा कि कोपेनहेगन कम्यून में हम मुसलमान जो है, माइनॉरिटीज जो है, हम वाहिद ऐसे है इस मॉडर्न जमाने में कि हमारे ऊपर कोई डेटा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, रेसिज्म के हवाले से, हेल्थ पॉलिसी के हवाले से। और पुलिस ने 2024 में जो बनाती थी हर साल कि कितने होते, उसके बाद कितने वाक्य वो बताती थी कि 700 के करीब वाक्य होते हैं, वो उन्होंने 2024 से खत्म कर दिया। हमारी ये डिमांड थी कि कोपेनहेगन कम्यून जो है वो खुद अपना सर्वे करे, जो माइनॉरिटीज है उनके घर पे वो ई बॉक्स के थ्रू वो आए, एक स्पेयर स्कीम है जिसपे आप लिख सकें। क्यों जरूरी था? ताकि वो जब हर साल जमा हो हम उसके हिसाब से पॉलिसीज पे बना सके कि देखिए ये इश्यूज है माइनॉरिटीज को, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस पे भी इन्होंने किसी ने साथ नहीं दिया। और जबकि वहां पे बस मैं यही ख्याल रख रहा था।
1: चले, ये उसका मतलब है कि दोबारा चांसेस वो आप लोगों से रिज्यू कर सकते हैं?
2: वो जाहिर बात है जब तक बजट बंद नहीं होता तो रिज्यू कर सकते हैं। लेकिन मैंने वहां बड़ी क्लियरली अभी घंटा पहले मैंने किया, आपने देखा इसलिए ब्रेकिंग न्यूज लगी है छिविछो पे और छिविछो कॉस्मोपोल पे, मैंने वहां बहुत क्लियरली ये बात कही है कि हम जो तवक्को रख रहे हैं और जो हजारों की लाखों की तादाद में जिस वोटर ने सोशल डेमोक्रेट को हटा के आपको वोट दे के अब लाए हैं, उनकी तवक्कोआत ये नहीं है कि आप फिर उसी तरह करें जिस तरह पहले चलता आ रहा है। उनकी तो तवक्को है कि अब फिर सियासत चेंज होगी कोपेनहेगन की, अब डिफरेंट होगी, अब इनोसिस्ट सबसे बड़ी पार्टी है, एसएफ लॉर्ड मेयर की पोस्ट पे बैठी है। इस हवाले से हमने इनको, मैंने बड़े वाजी अल्फाजों में, मैं उठने से पहले मैंने बल्कि बता ही देता, मैंने इस तरह शुरू किया, मैंने कहा कि मैंने उस दिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी यही बात की है असेंबली के फ्लोर पे, और मैंने यहाँ पे भी बार बार कर रहा हूँ आपकी, मैं समझता था कि ये बजट जो है इस बार डिफरेंट होना चाहिए। पहले जमाने में जिस तरह कभी सॉलिडेरिटी को सामने रखते हुए आप बच्चों पे, बूढ़ों पे पैसा लगाते थे, ये इस तरह का बजट होना चाहिए। इस पे मैं उसका नामो निशान नहीं देख रहा। इस वजह से 3 दिनों के बाद अब मैं इस फैसले तक पहुंचा हूं कि हमारा अब मजीद इस नेगोशिएशन में, इस फॉरहैंडलिंग में बैठना अब हमें नागुजार है, क्योंकि हमें जो जिस तरीके से ये शेप ले रहा है, जिसमें मैं भी आपको वो लिस्ट ला के दूंगा जिसपे आप देखेंगे कि किस तरह ये क्या क्या उस पे पैसे पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने कहा जब इंसान की बेसिक नीड पूरी नहीं है, जब लोग पैसों के हाथों फैमिली तंग है, जब इतने कोर इश्यूज हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, फजूल जगहों पे आप पैसे लगा रहे हैं, इसका हम हिस्सा नहीं बन सकते। ये बात मैं वहां करके मैं वहां से उठाऊं।
1: तो ये फिर बजट पास होने की आखिरी तारीख कौन सी है?
2: ये हफ्ता और जो दूसरा हफ्ता होता है, ये 2 हफ्ते होते हैं जिसमें नेगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कल तक परसों तक ये एक डील कर लेंगे।
1: मतलब ये सारा डील पे चलेगा, सारी पार्टियां डील करेंगी, क्या क्या हिस्सा मिलता है, जितना जुस्सा इतना हिस्सा लेंगे अपना।
2: बिल्कुल, देखे ना वो यही होता है ना कि मुझे सिर्फ इस चीज से ये इशू है कि आप जो कमरे के बाहर बात करते हैं ना, जो आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं, जो आप वोटर्स के सामने बात करते हैं, वही बात फिर आप बंद दरवाजों में के पीछे भी किया करें। और मैं समझता हूँ कि हम इलेक्ट इसलिए होते हैं कि हम अपने अवाम के लिए इलेक्ट होते हैं, हम एक दूसरे को पावर में रखने के लिए इलेक्ट नहीं होते। सो इसलिए हमारा बहुत वाजिया एक स्टांस था, पहले दिन से था, हमने बहुत जोर लगाया। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देखें जो राइट विंग पार्टीज है ना, ان پہ تو میں کوئی نہ ہی توقع رکھتا ہوں نہ ہی رکھنی چاہیے. لیکن جو لیفٹ ونگ پارٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں میجورٹی ان کی تھی, میجورٹی ان کی ہے, تو میں ان سے یقیناً مجھے وہ ہے ایک ایک انہوں نے امید توڑی ہے, کیونکہ 123 سال کے بعد ایک نئی لارڈ میئر آئی ہے, اس کو تو اس کا پاس رکھنا چاہیے تھا نا, چینج کرنا چاہیے تھا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں اب میڈیا سارا جو ہے وہ اب اسے جو جو جو چھوچھو کوسموفول ہے انہوں نے اب رابطہ کر رہے ہیں نا لارڈ میئر سے, کہہ رہے ہیں سکندر یہ جو بات کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر کامنٹ دیں. اب اس نے کہا ہے کہہ رہی ہے کہ میرے کوئی کامنٹس نہیں ہے, وہ کیا دے کامنٹ, میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں, میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی, بالکل صحیح کر رہا ہوں. آپ بتائیں مجھے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ورلڈ کوبر ہے.
1: چلیں آپ لوگوں نے جن سے ووٹیں لی ہیں, جو آپ کا پارٹی کا ہے جو طریقہ کار ہے جسے کہتے ہیں سولیڈیریٹی کے لیے, آپ نے کوشش پوری کی اور جو آپ کا موقف تھا آپ کا تسلیم نہیں کیا جا رہا, تو آپ واک آؤٹ کر گئے.
2: نہیں دیکھیں دیکھیں یہی ہوتا ہے نا, اب میں اگر چاہتا تو میں بیٹھا رہتا, میں کہتا چلے ٹھیک ہے, اور پھر میں بجٹ کا حصہ بنتا, پھر ہم ایک دوسرے کو جو کمر نہیں ہوتی کمر کھجاتے ہیں ایک دوسرے کی, میں بھی بیٹھا رہتا. لیکن ہم ہماری سیاست ایسی نہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو آپ نے پہلے وعدے کیے ہیں ان وعدوں پہ اترے. میں نے یہ بات کی ہے وہاں پہ بھی نا کہ آپ لوگوں نے کیا الیکشنوں میں وعدے کیے جس وجہ سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے اور سوشل ڈیموکریٹ کو نہیں دیے, وہ ان وعدوں پہ اترے, اب آپ کے پاس پاور ہے.
1: چلیں سکندر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بریکنگ نیوز دی, تو انشاءاللہ باقیہ جو ہے اتوار سنڈے والے دن آپ کو براہ راست دوبارہ لیں گے. سامع ناظرین یہ تھے ملک سکندر صدیق جو کوپن ایگن پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بجٹس کا جو پاس ہونے جا رہا تھا اسے انہوں نے واک آؤٹ کر لیا ہے, لیکن پھر بھی بات چیت ہو سکتی ہے, یہاں ایک ڈیموکریسی ہے, یہاں بات چیت کے راستے بند نہیں ہوتے. سامع ناظرین آج کی بریکنگ نیوز تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
0: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: लुबना इलाही साहबा जो कि बहुत पुरानी सिटी काउंसलर रही हैं, बड़ी एक्टिव हैं, अपनी जिस जमात के साथ इनका तल्लक है उस जमात से बड़ी एक्टिव हैं। ये किसी जमाने में भी जो है सोशल डेमोक्रेट पे भी इनका जो है वो तूती बोलता था, लेकिन अब अपनी ये सियासत करती हैं, अपने तरीके से सियासत करती हैं और एक्टिव रहती हैं और जो है वो अपनी जो है एडवाइस भी देती रहती हैं। बेसिकली ये स्कूल टीचर हैं। लुबना, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ चौधरी शकोत साहब और कामरान है, इलेक्शन में कामरान जा रहा है स्वीडन में।
2: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम और बाकी सबको भी अस्सलाम वालेकुम और सुनने वालों को भी सलाम।
1: जी वालेकुम सलाम लुबना
2: जी।
1: छोटी सी तमीद बांधी है, हमारे साथ चौधरी शौकत साहब भी हैं और कामरान अनवर भी हैं। तो ये इलेक्शन हो रहा है सितंबर में स्वीडन मालमो में, तो यहाँ भी लोग दोनों तरफ, चूंकि यहाँ भी उनका स्वीडन में भी दोहरी शरीयत का निज़ाम है, तो यहाँ से लोग भी वोट डाल सकते हैं। तो एज ए सियासतदान आप क्या क्या कहती हैं, इनको क्या तजावीज देंगी?
2: मैं तो राय साहब आपको पता है हमेशा की तरह ये कहती हूँ कि आपसे वोट डालना है, जब आप वोट नहीं डालते तो जो वो एक बैलेंस खत्म हो जाता है। जो लोग हमारी बर्बादी चाहते हैं वो तो वोट डालते ही हैं, और हम लोग घर में भी बक बक झक झक करके गुस्से से वोट नहीं डालते, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ डालें। अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि आपको बोलने का भी हक हो ना। जब आप वोट नहीं डालते तो फिर एतराज करने का भी हक नहीं। मेरी तो यही होगी, और कामरान कोई अननोन शख्सियत नहीं है, काफी अरसे से अपने हम वतनों के लिए स्वीडन में काम कर रहा है। मैंने तो हमेशा इसके बारे में अच्छा ही सुना है, तो अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे।
1: तो लुबना, यहाँ की भी बात कर लें, यहाँ भी बड़े काम हुए और काम होने जा रहे हैं, यहाँ भी किसी टाइम भी पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि उनके इलेक्शन तो अपने टाइम पर होते हैं, तो यहाँ कम्यूनों में क्या हो रहा है?
2: आपको मेरी पेशन को याद नहीं आई कि मैंने कहा था ये अपना टर्नोल हुकूमत नहीं निकालेगी। अभी देखे जो पहला एतराज जो है कि जो के जैसे रेडिकल वेंस्टर के लिए नो गो है, वो ये है कि जो शरीयत की कमेटी है, इंफ्यूज़गास की कमेटी, वहां पे उन्होंने जो लोग काफी अरसे से शरीयत जिन्होंने अप्लाई की हुई थी उनको रोक दिया, इस पर इतना बड़ा झगड़ा बना हुआ है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग अगली दफा सोच के वोट डालेंगे, क्योंकि जहां उन्होंने वोट डाला है वो अभी भूले नहीं है। तो इस चक्कर में ना रहें कि सिर्फ अपने लोगों को वोट डालना है, उस चक्कर में रहें कि जो बंदा बंदी आपके लिए काम करती है, चाहे किसी पार्टी से भी हो। तो कि जिन लोगों ने जैसे डेनमार्क की सोशल डेमोक्रेट है उसमें और टेंस खोल के पार्टी में मेरा ख्याल है 70% फर्क है, 30% ये डिफरेंट है। अदरवाइज वो वही बातें करते हैं जो, या वही पॉलिसीज बनाना चाहते हैं जो डेनिश सोशल डेमोक्रेट है, जो कि डेंस खोल के पट्टी करती है। तो मैं तो बहुत उम्मीद करती हूँ, खुदा से दुआ करती हूँ कि मिड टर्म इलेक्शन आए तो कि हमारी इस मनूस से जान छुटे, कोई दूसरा आए जो कि हक इंसाफ की बात करें। अभी देखे कि इंगस्टॉयबिया ने एक उधर अस्तर गिमनेजियम है, तो वहां पे कुछ बच्चों ने हमाकत है कि वो कहा कि लड़कियों को कहा तुम ये क्यों पहनती हो, वो क्यों पहनती हो, तो ये उनका काम नहीं है, बच्चों की तरबियत के लिए उनके

0: جب آپ الیکٹ ہو گئے ہیں, آتے ہیں نا عوام آپ کو سلیکٹ کرتی ہے, تو پھر الیکٹ ہو گئے ہیں آپ, تو آپ اس میں آ گئے ہیں, تو جب آپ نے کسی ود, میں یہ ادھر کی بات کر رہا ہوں اپنے یورپ کی, تو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, بھائی ہیں بہنیں ہیں, تو وہ جو وعدہ کرتے ہیں نا, وہ پھر اپنا وعدہ 100% نہیں تو کم از کم 80-90% پورا کیا کریں اپنی اپنے اپنے کہتے ہیں ووٹروں کے ساتھ. یہ میرا بار بار کہنا ہے. تو میں آپ والی بات پھر, جب تک آپ اپنے سارے اوورسیز پوری دنیا میں, جب تک آپ پاکستانی گندی سیاست, گندی ترین سیاست ہے, اچھی سیاست بھی لوگ کرتے ہیں لیکن گندی ترین سیاست کو آپ ختم نہیں نہ کریں گے, آپ ترقی بھی نہیں کر سکتے کسی چیز میں. یورپ میں بھی پیچھے رہ جائیں گے, ہر ایک سے, ہر محاذ میں پیچھے رہ جائیں گے, نہیں کر سکتے ترقی. یہ کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, یہی قانون ہے. اللہ تعالیٰ کے اصول و قانونوں کو تو نہیں آپ رد کر سکتے نا. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے ہر وقت, اللہ تعالیٰ تو آپ کو لمحہ لمحہ دیکھ رہا, سن رہے, اس کے ساتھ تو نہیں نا آپ کہتے ہیں مکاری یاری کر سکتے. یاری بھی تو کرتے ہیں نا ہم لوگ.
1: دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا, کیا وہ کام ہم کرتے نہیں ہیں؟
0: ہم وہ کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہم وہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا وہ کام کر رہے ہیں, اس لیے تو ایسے ہو رہا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ دین کو بھی استعمال کرتے ہیں یار. دین کو بھی, دین بھی آج, قرآن بھی آپ کو آج کل پیسوں میں بکتا ہے, دین بھی آپ کا بک رہا ہے پیسوں میں. یعنی کہ صبح دین کو استعمال کرتا ہے, رات کو شیطان بناتا ہے بندہ وہی. دوبارہ صبح یا رات کو شیطان ہے وہ پورا. صبح وہ دین کو استعمال کر رہا ہے ٹوپی پہن کے, اللہ اللہ کر رہا ہے, وہ ختم ہو رہے ہیں یار میر شریف کے فلان جگہ. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یار دین کو تو نہ استعمال کرو. پھر اپنا دین آپ اپنے پاس چھپ کے اللہ کے ساتھ کرو, اس کا چرچا نہ کرو. ایسے چرچا وہ کرتے ہوئے اچھا لگتے ہیں جو معاشرہ سلجھا ہو, جس میں کوئی ہلاکیات ہو. جس معاشرے میں ہلاکیات نہیں, وہ اپنے دین کا کیا چرچا کریں گے؟ کیونکہ اس نے تو اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. میں کیسے چرچا کروں اپنے دین کا؟ ہمارے ملک میں چلے لے لیتے ہیں, کوئی ہلاکیت ہی نہیں ہے, بے حیائی اوپر ادھر عروج پر, اس پہ بات کریں گے تو ہنسیں گے آگے سے. یہ تو یار آپ کیا بات کر رہے ہیں شاہ صاحب, یہاں تو یہ تو عام ہو گئی ہے چیزیں. یہاں پر
1: مفتی کبھی کتنے دیکھے ہوئے ہیں پاکستان میں؟
0: کیا اب میں کیا بات کروں ان کے اوپر؟
1: یہ دیکھیں, میں نے آپ کی بات کو آگے بڑھایا شاہ. یہ دیکھیں, یہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں, یہ اب سوال کرتے ہیں. جس طرح آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا, آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں, آپ یہاں کو دیکھ رہے ہیں, تو سوال کرتے رہیں گے. منافقت کی بات کرتے ہیں, آپ نے لکھا ہوا ہے کہ منافقت دراصل پشت کے پیچھے دشمنی نہیں بلکہ منہ کے اوپر دوستی کا نام ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور چھپا کے نہیں کر رہے. آپ دیکھیں نا منافق کیا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم نے اس پر جو ہے پروگرام کیے, کئی دفعہ علماء نے اس پر بات کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں منافق کو معاف نہیں کروں گا, جو میرے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اس کو معاف, جو میرے ساتھ کسی کو جوڑتا ہے میں معاف نہیں کروں گا, باقی سب بہت ساری چیزیں میں معاف کر دوں گا. جنت دوزخ کس لیے بنا ہے؟ جنت دوزخ کو مذاق تو نہیں ہے, جنت دوزخ بنائے گئے انہی وجہ سے بنائے گئے ہیں. تو یہ سزائیں ملیں گی. وہ کوئی بندے کہتے ہیں جی بس ایک بار پڑھنے سے 10 حج کا ثواب ہو جاتا ہے, پھر حج کا ثواب پڑھنے کا ہو جاتا ہے تو خانہ کعبہ میں کیوں جاتے ہیں؟ آج ادھر حج کرنے کے لیے کیوں مکہ مدینہ جاتے ہیں؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ڈس
0: انفارمیشن. میں اس میں ایک بات اور ایڈ کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو.
1: جی جی.
0: ایک تو یہ چیزیں ہیں نا, اگر آپ میری, اگر لوگ دوست یہاں پر جو سن رہے ہیں سامعین, وہ اس کو سمجھیں گے, آپ بھی سمجھیں گے. ایک تو ہمارے میں یہ بہت زیادہ ہے, ایک اس کو منافقت ہی کہہ لیں, تعلقات کی بیس پر, یعنی کہ تعلقات بناتے ہیں. یا یعنی کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, لیکن پتہ ہے آپ کو سچ کیا ہے, لیکن آپ تعلقات کی بیس پر آپ وہ سچ کو جو چھپا رہے ہیں, یعنی کہ اسے منہ پھیر رہے ہیں. یعنی کہ میں نے یہ پڑھا تھا, اگر غلط نہ ہو جائے, کیونکہ میں یہ کوڑ یہاں غلط نہیں کرنا چاہتا, کسی حدیث میں پڑھا تھا کہ کسی صحابہ نے فلاں, میں یہاں غلط نہ ہو جائے کیونکہ میں, میرے پاس آفس میں نہیں ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا, پوچھا کہ آپ کے پیچھے تو آپ اکیلے رہ گئے ہیں, ادھر تو ہزار بندہ کھڑا ہے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف اگر ہزار بندہ بھی ہو جائے, میں اکیلا رہ جاؤں تو میں سچ کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا. ایسے ہی ہے یہ لوگ. یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ یار وہ تعلقات ہی کوئی نہیں, وہ جانتے ہی کوئی نہیں. یہ سارے نال بھی ہزار بندہ, 100 بندہ, 200 بندہ کھلوتا تھا, ऐसे बात करते हैं ये ऐसे हम लोग हो गए हैं, यानी कि तल्लुकात की बेस पर एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, चाहे वो गलती सही है, चाहे मैं गलत हूं। आपको पता है
1: आपको पता है कि
0: जो बंदा कोई भी हो दुनिया में, आपने तारीख पढ़ी है, जो सच की बात करेगा उसके उसके उसके दुश्मन होंगे, सिर्फ उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, ना उसके दोस्त होंगे। यही अल्लाह ताला को पसंद है।
1: आप देखें, जब बात की जाती है ना कि सारी दुनिया में आप देख लें कि बाज जगह आपको पता है कि गुलाम खरीदे जाते थे, मंडियां लगती थी, उनकी कीमत दी जाती थी, ठीक है, गुलामों में भी किस्में होती थी, कितनी कीमत का गुलाम है कितने में, और दूसरा गुलाम दूसरे को बेहतर मिलते थे, मालिक गुलाम को बेच देता था, ये हमने सब पढ़ा। लेकिन हम 2026 में रह रहे हैं, यहां भी गुलाम बिकते हैं, सियासी गुलाम।
0: देख लें आप,
1: 2026 का होता है ना, यहाँ भी हम यहाँ की बात करते हैं, डेनमार्क की, इनका तो आइन है, कानून है, हमें इत्राम करना चाहिए, ये कानून के अंदर रहते हैं, कानून के नीचे रहते हैं, इक्वल राइट्स की ये हमायत करते हैं, शादी की इजाजत है, तो क्या मुसलमान खरीदते नहीं है जाकर, उनके गलों में हार नहीं डालते?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की आपने।
1: तो ये बहुत सारी चीजें, हम रियलिटी से पीछे हट जाते हैं, हम अपनी तसल्ली करने के लिए, भाई यहाँ का कानून है, जिस मुल्क में आप रहते हैं उसका आइन में इसको जो है उस पर लिखा हुआ है, तो हमें क्या कि जिस मुल्क के हम किसी के मुल्क के आइन की मुखालफत कर सकते हैं? रहते हैं हम ये डेनमार्क में, सियासत हम पता नहीं कहाँ की कर रहे होते हैं। आप बंदे हमारे यहाँ हार जाते हैं, जो आप मैं भी वो जो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कहता रहता हूँ, बहुत सारे आलम बन जाते हैं, सियासी आलम बन जाते हैं, हम एक दूसरे के पीछे बैठे हुए गाली निकाल रहे होते हैं, और मुझे कितने लोगों ने सबूत दिए, मुझे शर्म आती है, वो सुन के भी शर्म आती है, यार ऐसे भी लोग हैं। फिर जब हम बीमारियों की बात करते हैं, तो अब मेरा यकीन हो गया कि ये बीमारी एक किस्म की ज़हनी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, या ज़हनी मरीज एक बीमारी नहीं होती, ये बहुत सारी बीमारियाँ, ये ठीक ही नहीं हो सकती। जो आपका दोस्त आपके पीछे बैठे आपको गाली निकाल रहा है, वो आपका दोस्त अब बीमार आदमी है। वो
0: देख लें फिर राजा साहब क्या चल रहा है। अब आपने खुद ही इसकी सारी तशरीह कर दी है, तो मैं
1: शायद आप इजाजत लेते हैं, आप भी मुझे पता है मौजूद हैं, आप ऑफिस में मौजूद नहीं,
0: नहीं आप कोई नहीं, आप कोई नहीं बात करें, मैं कोई ये भी नहीं अब कह सकता कि इनको हदायत दे, कितनी बार कहूंगा या कितनी बार कहेंगे हम आपस में एक दूसरे को, हमें हदायत दे सबको। हदायत तो अल्लाह ताला ने, तो मुझे लगता है आपको पता है मेरे ये पढ़ा हुआ है कि तौबा के दरवाजे बंद हो जाने एक दिन अचानक ही, तो मुझे तो लगता है कि इधर तो तौबा के दरवाजे पहले बंद हो गए हुए हैं, इधर हमारे ऊपर इस कौम के ऊपर, कि तौबा ही कोई नहीं, कोई दुआ ही नहीं कबूल हो रही। बता दें कोई दुआ कबूल हुई हो, दुआएं करते हैं ना सारे, हमारी माँ बहनें बेटियां सब कर रही हैं, मुल्क के ऊपर भी कर रही हैं, सबके ऊपर, कि हमारा कोई परेशान हाल नहीं है, कोई हो, कोई दुआ कबूल हो रही है। मुझे ही लगता है कि यहाँ तो अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे, अल्लाह ताला नाराज है बड़ा सख्त। अकल भी तो काम करती है ना, कुरान पाक पढ़ा हुआ है आपने उर्दू के साथ इंग्लिश के साथ, उसको तो बार बार पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। उसमें अल्लाह ताला ने यही चीजें फरमाई हुई हैं कि मैं मेहरबान हूं नहायत, अपने इंसान के ऊपर बहुत मेहरबान है अल्लाह ताला, बहुत प्यार करने वाला है इंसान को, तो अल्लाह ताला ही ये कहता है कि उसको हो जाता है कि मैं अपने इंसान को कोई ना पहुंचाऊं, चाहे वो जितना मर्जी जालिम भी हो, कर देता है। शिर्क नहीं माफ करता अल्लाह ताला किसी को जो उसके अगेंस्ट आ जाए कि मैं खुदा हूं। और दूसरी बात ये अय्यारी मकारी और झूठ और मुनाफ़क़त, तो देख लें आप,
1: शायद
0: हम कितने
1: लोगों ने एक अपना बनाया हुआ है ना। अब यहाँ जितने भी मेले हुए हैं, जितने भी, और इसमें कामयाबी का राज क्या था? मैंगो फेस्टिवल, उसमें आम लगे हुए हैं, लोग जो है वो जा रहे हैं, ख्वातीन जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, फैमिली जा रहे हैं, कहीं सहूलियात ज़्यादा हैं, कहीं सहूलियात थोड़ी हैं। जो मैंने एनालाइज़ किया है कि लोग दिनों पे नहीं जाते, लोग स्टालों पे जाते हैं, इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस दफा साबित हुई हैं।
0: बिल्कुल इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि अभी आपने खुद ही बताया कि लोग यहाँ पर कोई छोटी मोटी एंटरटेनमेंट चाहते हैं, इस तरह की एंटरटेनमेंट जो हटके, दूसरी चीजों से हटके जो की है, स्टालों में कर लें। मैंगो फेस्टिवल एक, जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान का भी लगता है, पता कि ये पाकिस्तान के आम है, इधर अंग्रेज लोग भी आते हैं, डैनिश भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, इंडियंस भी हैं, सिख भी हैं, मैंने देखे हैं बहुत से लोग, उनको पता लगता है ये पक्षन के आम है, और कईयों को नहीं पता, फिर पता लगता है ये, खासकर डैनिश लोगों को आते हैं। और फिर इस तरह आप जो है ना, आपकी मशहूरी होती है इन चीजों को करें हाईलाइट, बजाय कि आप गंदी सियासत करें उससे आप हट जाएं। ये बाकी सबके अपना अपना है, एक राय है ना, मशवरा है ना,
1: जमहूरी
0: किसी को
1: मुल्क है, हर
0: हाँ
1: आदमी का हक है, उसे हक है, जो यहाँ बोलने की आज़ादी है, कहने की आज़ादी है, जहाँ कानून ने इजाज़त दी है कानून कहता है, लेकिन कुछ हदें ऐसी होती हैं जो इंसान को खुद भी ख्याल करना पड़ता है।
0: बिल्कुल ठीक फरमाया आपने।
1: एक बंदा कहता है यार मुझे कानून इजाज़त देता है, तो खुद भी कुछ चीज़ें होती है ना, खुद भी बंदा कह लगता है यार मैं किसी के दीन की बात गलत ना करूं, उसका दिल हार्ट होगा, तो ये बंदा खुद भी कह सकता है। अब कानून में यहाँ बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त है, लेकिन ये तो नहीं आपने सब कुछ वही करना है।
0: यहाँ पर मैं ये बात कहते चलूं, आपने चले ये बात कर ही दी है, किसी के दीन के बारे में खासकर हमें ये बात करते हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम पहले खुद अपने दीन के मुताबिक चल रहे हैं। जो जो हकामात आपके रब ने और आपके रसूल ने दिए हैं उसके ऊपर आप पूरी तरह पहले अमल कर लें, क्योंकि आपके ऊपर सवाल हो सकता है। आप किसी के दीन के ऊपर, और वैसे भी हमें किसी, हमारे दीन ने ये सिखाया कि आप किसी के दीन के ऊपर किसी किस्म का कोई फतवा या किसी किस्म का ये नहीं लगा सकते कि आप ये करें। और जिन मुल्क ममालिक में आप हम रह रहे हैं, डेनमार्क स्वीडन में, हम यहाँ पर एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज और दूसरे जो मुल्कों के लोग हैं हम यहाँ पर आए हैं, जब फिर हमने हमने इनके ममालिक के कवानीन का एहतराम करना, ये हमारे दीन में भी है, ये और दीनों में भी है, लेकिन हमारे दीन की मैं बात करूँ हमारे दीन में भी है। आप यहाँ पर जबरदस्ती कोई चीज मसला नहीं थी, कानून को आप ये नहीं कर सकते कि ये कानून मुझे पसंद नहीं है, तो लिहाजा है लोग शिद्दत पसंदी जो है यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाती। ये ऐसी है कि जब आप अपने मुल्कों में जाते हैं तो आपके साथ वहां क्या होता है, शिद्दत पसंदी करते हैं तो क्या
1: शायद
0: करते हैं,
1: मैं
0: आपको
1: पता नहीं बात
0: नंगा
1: करने
0: करके,
1: लगूं,
0: नंगा करके लटका के मारते हैं आपको।
1: शायद
0: इधर जब
1: देखिए
0: आप
1: बात मैं
0: इसमें
1: करने लगूं कि सारी सियासी जमातों का मंशूर होता है, क्या सारी जमातें अपने मंशूर पर अमल करती हैं जो उन्होंने खुद मंशूर बनाया होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था वो मंशूर ही था ना, और क्या था?
0: बिल्कुल
1: ठीक है वो मंशूर था, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशूर पर हम अमल करते हैं?
0: बिल्कुल नहीं,
1: कोड हम करते हैं। इसी तरह ये जो होता है ना, जब तक आप अपने मंशूर पर अमल नहीं करते, आप जहाँ चाहते हैं, जहाँ आपको दीनी लिहाज से जाते हैं, उस मंशूर पर अमल नहीं करते, हमारा तो किसी बंदे से गिला बनता ही नहीं है।
0: नहीं हम उस मंशूर को कोड करते हैं या उसको हर अमल नहीं करते, कोड करके लोगों को बताते हैं जिसमें उसने कोई अपना मफाद हासिल करना हो, ये भी बताएं।
1: सही बात, सही बात। तो शायद आपका बहुत शुक्रिया, आप ऑफिस से बाहर हैं, आपने कीमती टाइम दिया, मुझे पता है काम करने वाले का बंदा कितना कीमती टाइम होता है, छुट्टी का दिन है, तो ये छुट्टी के जो दिन होते हैं हमने 35, 36, 40 साल के करीब जो है अपनी आवाम के लिए दिए हैं। आज आपका भी छुट्टी का दिन है, मेरा भी छुट्टी का दिन है, जो हमें सुन रहे हैं उनकी भी छुट्टी है, वो तो गाड़ियों में बैठे हुए, दुकानों में बैठे हुए, पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए, दुनिया के किसी हिस्से में बैठे हुए सुन रहे, वो तो बड़े इन्जॉय करते हैं। मैं भी जब बैठता हूँ कभी गाड़ी में, कभी दोस्तों के पास, तो जब कोई प्रोग्राम लगा हो तो मैं भी बड़ा इन्जॉय करता हूँ।
0: राजा साहब, मैंने मैंने चले थोड़ी मजाकन बात भी कर लें, मैंने तो आपको छुट्टी पर ही देखा है 25 साल।
1: आप
0: आवाज आ रही
1: देख लेना, जो कहते हैं कि हम लोगों ने किया क्या है, जो मजाक की तरफ, हम जब मजाक पे आते हैं, जिन लोगों ने काम किया होता है उन्होंने किया होता है, किसी ने भी किया, अगर कोई बंदा आपको पसंद नहीं है लेकिन उसने ज़िंदगी में कोई काम किया हो, तो उस काम की तो बंदा जो कहता है यार इसने किया हो, बंदा मुझे पसंद नहीं है, इसने काम तो किया हो, ये एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट नहीं करते, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, गीबत की तरफ चले जाते हैं, मुनाफ़त की तरफ चले जाते हैं।
0: राजा साहब, अगर कल को फर्ज करें मुझे कोई शील्ड मिल गई है, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं कोई छोड़ेगा कि इसको शील्ड क्यों मिली है। ये है इधर जो कौमे है ना, ये इधर की जो है जाम
1: देखिए
0: रहते हैं जिन
1: उसमें
0: माशरों
1: चंद
0: में,
1: लोग होते हैं, देखिए ना कहते होते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, क्या मछली तालाब गंदा कर सकती है? क्या
0: नहीं मछली तो नहीं कर
1: मछली नहीं तालाब गंदा कर सकती? वो कहते हैं एक मछली, इसकी वजाहत है। इसी तरह चंद लोग होते हैं जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं और उस पे जो है ना उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने दिल को तसल्ली देते हैं। हर इंसान को अपनी खूबी का भी पता है, खामी का भी पता है, दोस्ती का भी पता है और दोस्ती ना होने का भी पता होता है, मुनाफ़त का भी पता है, लेकिन ये चंद लोग होते हैं, शायद इतनी ज़्यादा लोगों की तादाद नहीं, बहुत यहाँ सादे लोग हैं, बड़े सिंपल लोग हैं, ये बच्चे बड़े मासूम हैं, इनकी तख्तियों, ये बच्चे पैदा होते हैं, इस तख्ती तख्ती पर कुछ नहीं लिखा होता, ये हम इनकी तख्ती पर लिखते हैं और उसके बाद बच्चों को ख़राब कर देते हैं। बच्चे जो है यहाँ पैदा, बच्चा कौन पैदा होता है, उसके माथे पर लिखा होता है कुछ? कुछ भी नहीं लिखा होता। आप अजान देते हैं, अगर मुसलमान पैदा हुआ तो अजान क्यों देते हैं आप? अच्छा, अजान दी जाती है, इसी तरह क्रिश्चियन है वो उसको अपने निज़ाम से करते हैं, दूसरे मज़ाहब हैं वो अपने निज़ाम से करते हैं, तो मैं तो सब मज़ाहब की जो है इज्जत करता हूँ शायद।
0: जी, और यही ऐसे ही करना चाहिए यहाँ पर रह के। अब आप अगर आपको ये चीजें नहीं अच्छी लगती तो फिर यही है, आपको डैनिश कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। अगर आप नहीं इनके कानून के मुताबिक चलना चाहते, सऊदी अरब में चलते हैं ना इनके कानून के मुताबिक, वहाँ कितनी सख्त सजाएं हैं, वहां तो आप चुप करके सर झुका के चलते हैं। जो उधर लोग जो काम कर रहे हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली जो भी हैं, जो कौमें वहां काम कर रही हैं, तो इधर आप क्यों जो है इनकी वायलेशन करने की कोशिश करते हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ कि उसमें कुछ लोग करते हैं और उन्हीं के ऊपर ये इन्होंने शिकंजा जो है ना टाइट किया हुआ है और कर रहे हैं इधर, और मजीद जो कानून लेके आ रहे हैं यहाँ पर जो गैर मुल्की हैं, चाहे कोई भी है, तो आपको भी पता है इस बात का।
1: शायद जो नए कानून आ रहे हैं इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
0: थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह।
1: सामान नाज़रीन, ये थे शायद नसीम जो के हमसे बात कर रहे थे। समाइन, हमारी बात जो होती है सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, हमारा किसी से मुतफिक होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हैं, आप टाइम लेना चाहते हैं, तो आपके लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आप अपना नुक्ता नज़र पेश खर्च कर सकते हैं, आप अभी बात करना चाहते हैं आप अभी बात कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं। हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: आपको जो मिल गया ये वैसे ही मिल गया है,
1: देखिए ये जो
0: इसका पूरा
1: प्रेजिडेंशियल,
0: प्रोसीजर अगर बता सकते हैं तो।
1: देखिए ये जो प्रेजिडेंशियल जो मेडल होता है ना, ये हाईएस्ट जो पाकिस्तान की जो रिकग्निशन है, जो मेडल्स होते हैं, जो कैटेगरी होती है मेडल्स की, ये वो हाईएस्ट कैटेगरी होती है। ये प्रेसिडेंट जो है वो देते हैं, और ये स्टेट होती है वो ये फैसला करती है कि इसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं इसे, कि आपने कोई ऐसी परफॉर्मेंस की हो तो तब देते हैं। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे शायद वो नादान दोस्त या जिनको शायद इतना नहीं पता, वो ये समझते हैं कि कोई एम्बेसी जो है वो नाम दे दे तो बस मेडल मिल जाता है। ये बिल्कुल बचकाना सोच है, और ये शायद उन लोगों को असल में वो कभी खुद इन फील्ड में रहे नहीं, उनका इनसे शायद कोई तल्लक जाहिर बात है नहीं रहा, उनको शायद पता नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, वो एम्बेसडर साहब या एम्बेसी जो है वो मेडल दिलवा देती है। ये बिल्कुल खुराफात है, इस तरह नहीं होता। इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, उससे आप गुजरते हैं। ये पहले आपका कोई नाम देता है, या कोई जगह से एक एप्लीकेशन जाती है कि ये इसकी जो है, या वो खुद जो कमेटी जो बैठती है मेडल देने के लिए, वो देखती है कि वहां पे यहाँ पे ये लोग जो है ये एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफी अरसे से दे रहे हैं, या इनका कोई ऐसा काम है जो जो एक मेडल के लायक है। तो वो फिर बकायदा 8 मीटिंग्स होती हैं, एक बकायदा एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें इदारों के लोग होते हैं, जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, जिसमें और एमबेसी से रिपोर्ट जाती है, हर तरफ से जाती है, और अक्सर जिनके नाम दिए जाते हैं वो इस प्रोसेस में पहली मीटिंग में उनका नाम जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर वो दूसरी सेशन होता है, फिर तीसरा होता है, फिर इस तरह कई सेशन के बाद जाके हर इदारे की रिपोर्ट पढ़ के, एम्बेसी की रिपोर्ट पढ़, अगर जिस तरह हम मैं हूँ अपाहिज रहता हूँ, यकीन उन्होंने एम्बेसी से भी पूछा होगा आप बताएं, और हर आपको पता ना ये सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मांगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अगर उनका रिकॉर्ड सही ना हो, या उनके उनकी कोई ऐसी प्रोफाइल हो, तो इदारे जो है वो कहते हैं कि इसको नहीं देना, क्योंकि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मेडल होता है। ये इस तरह होता है जिस तरह यहाँ का जो किंग होता है वो आपको गजा खोज दे, या इनकी एलिफेंट ऑर्डन होती है। तो इसी तरह ये पाकिस्तान का सबसे बड़े मेडल है, कैटेगरी मेडलों की। तो वहां पे बड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि किसे दिया जाए, कैसे दिया जाए। फिर आप पहली मीटिंग से, पहली प्रोसीजर से अगर आप निकल जाए, फिर आपका नाम दूसरे प्रोसीजर में जाता है, उधर से निकल जाए, इस तरह करते करते अक्सर पहले में रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर कुछ दूसरे में हो जाते हैं, कुछ तीसरे में हो जाते हैं, इस तरह करते करते चंद लोगों को वो ये मेडल देते हैं। और जिस तरह की मैं बता रहा हूँ, उसमें सारे जो पाकिस्तान के बड़े इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, कौमी इदारे हैं, जो बड़े बड़े सिक्योरिटी हवाले से, उन सब से गुजरती है ये बात, तब जाके आपको मेडल मिलता है। तो ये जो अगर कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि ये एम्बेसडर के साथ अच्छे तलुकात हो या किसी के साथ अच्छे तलुकात हो तो आपको मेडल मिल जाता है, मैं समझता हूँ ये वो क्या कहते हैं बेचारे, जो जिन लोगों को ज्यादा इल्म नहीं है इस बारे में, ये वो ही लोग जो है समझ सकते हैं। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो हर वक्त हर किसी को मेडल मिल रहे होते। पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, और मैं सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान नहीं कहूंगा, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये हुकूमत नहीं देती, स्टेट आपको देती है। फिर ये जो मेडल आपको फिजिकली सदर देता है, जो जो मुल्क का सदर होता है, लेकिन ये मेडल स्टेट देती है, हुकूमत नहीं देती। और स्टेट का ये बहुत बड़ा ये एजाज होता है, और इसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स हैं। तो कुछ जो लोग जलने वाले जो होते हैं, कुछ लोग जिनको मिर्चे लगती हैं ऐसी बातों में, वो तो फिर ये कहते हैं कि वो ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया, ऐसे नहीं मिलता। उसके बाद आप ये देखें, उसके बाद जब आपको ये देते हैं तो वहां पे बकायदा एक आपकी साइटेशन पढ़ी जाती है, आपकी क्रेडेंशियल्स पढ़े जाते हैं, आपको क्यों दिया जा रहा है, वो बकायदा आपको एक रिटर्न में मिलता है, जहां आपको लिखते हैं रिटर्न में कि हम आपको ये मेडल इसलिए दे रहे हैं। तो उसपे मैंने कल भी इस पे बकायदा जो है इस पे थोड़ी रोशनी डाली, और वो साइटेशन जो है मैंने घर से मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इन्होंने क्यों दी, और उसमें जाहिर बात है मेरा जो पॉलिटिकल वर्क है पिछले 20 साल

0: तैयारी की जरूरत नहीं, मुझे ये टाइम नहीं मांगना पड़ेगा जी कि मुझे 5-10 मिनट दें ताकि मैं तैयारी कर लूं। तो जहां पर मुझे, और जिस मौजू पे आप चाहें, आप पॉलिटिकली हो, मजहबी हो, तो मैं अवेलेबल होता हूँ इंशाल्लाह। तो बहर हाल मैं समझता हूँ आपने ये अच्छी एक राय सब नुकता उठाया है, लेकिन बारे दिगर मैं अपनी बात को उस बात पे खत्म करूंगा जहां से ये बात शुरू हुई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा आपको जो एजाजी शील्ड दी गई है उस पर बारे दिगर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बल्कि मेरी अंबेसडर साहब से भी इस बारे में मुख्तसरन गुफ्तगू हुई थी, मैं कोशिश करूंगा उनके साथ मजीद इसको एलेबोरेट करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पाकिस्तानियों के हिस्से में एक तो सदारती अवार्ड है जो वो भी आया है, और एम्बेसी से आपको भी ये शील्ड दी गई है। ये एक अलग मौजू है, लेकिन मैंने एम्बेसी साहब से ये भी गुजारिश की है जी कि इस तरह की जो एजाजी शील्ड्स हैं इससे हौसला अफजाई होती है, और उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया कि बिल्कुल ऐसी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं एम्बेसी को बाकायदा तौर पर, मेरे जहन में एक आइडिया है कि मैं लिख के भेजूंगा, गुजारिश करूंगा एम्बेसी से, जो कि वो हमारे नुमाइंदे, हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे, ना वो हमसे अलग है ना हम उनसे अलग है। तो मैं उनसे जरूर गुजारिश करूंगा कि हर साल किसी एक, कोई एक किसी बंदे को आप चुन लें, उसकी, वो जर्नलिस्ट हो सकता है, वो कोई टीचर हो सकता है, वो कोई डॉक्टर्स में से हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई ऐसा बंदा जिसकी कम्युनिटी के लिए खिदमात है, उसको आप साल में आप 2-3 लोगों का नाम लिखें, फिर उनमें से कम्युनिटी से उनके मुताबिक आप राय शुमारी ले लें। कम्युनिटी अगर जिसको बेहतर समझती है वो उसको उसको ये एहसास है ये जरूर देना चाहिए। जहां तक वो सदारती अवार्ड के मुतालिक है, वो तो एम्बेसी ने जिसको नॉमिनेट करना वो तो उसी ने, वो तो चूंकि उसका मैकेनिज्म इस तरह का, एम्बेसी रिकमेंड करती है यहाँ से, तो फिर वहां पे जो प्रोसेस है उसमें से गुजर के तो सदारती अवार्ड किसी को मिलना है तो वो तो उसका तरीका ही अलग है। वो तो कम्युनिटी से थोड़ा ही पूछा जाता है जी कि आप किस लोग को समझते हैं, किसको समझते हैं कि कौन इसका हकदार है, वो उनकी जवाबदेही है एम्बेसी, तो वो उन्हें करने दें। और जो यहाँ पर लोग हैं, मेरी ये गुजारिश होगी एम्बेसी से, और एम्बेसी साहब को मैं लिख के भी भेजूंगा, अगर मौका मिलेगा मैं उनसे गुफ्तगू भी करूंगा इस पे, कि मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी रविश होगी। कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस दफा हमारी एम्बेसी ने ये दो काम जो करवाए, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कम अज कम दो पाकिस्तानियों को, एक सिकंदर सिद्दीक साहब को भी इस दफा सदारती अवार्ड मिला, और कल यानी जुमे वाले दिन 14 अगस्त को आपको ये जो एजाजी शील्ड दी गई है। मुझे इस पे खुशी है कि ये जो शुरुआत हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका तसलसल बरकरार रहेगा, और आइंदा हर साल किसी न किसी शख्स को इस तरह की एजाजी शील्ड मिलेगी। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानियों के लिए, ये किसी गैर मुल्की के लिए थोड़ी है, तो जिसको भी मिले हमें खुशी का इजहार करना चाहिए, है तो पाकिस्तानी ना, जिसको भी मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जब भी मेरी गुफ्तगू होगी उनसे तो मैं इस पर मजीद बात करूंगा कि इसको हर साल इस तरह का कोई एजाजी, जिसकी जिसको आप समझते हैं, कम्युनिटी समझती है कि किसी ने कोई नुमाया काम किया है, कोई काबिले कदर कोशिश की है अपनी कम्युनिटी के लिए, तो उनको इस एजाज से नवाजा जाए, तो मैं इंशाल्लाह इस पे मैं जरूर काम करूंगा।
1: शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम शेयर किया हमारे साथ।
0: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह जी, अल्लाह।
1: सामान नाज़रीन, ये थे सैयद एजाज हसन बुखारी शाह साहब से। शाह साहब बड़ी मेहनत करते हैं, दीनी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, कम्युनिटी के लिहाज से भी, ये सारी बातें चलती रहती हैं और चलती रहनी भी चाहिए। इन चीज़ों पर बातचीत भी होनी चाहिए, डिबेट भी होनी चाहिए, और सब की जो है वो नीयत भी साफ होनी चाहिए। सामने नाज़रीन, हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजर सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजर सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजर सामाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वजीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। माजरत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वजीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वजीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है, ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुसलमान मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई, ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे। पिया कियास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है وہ ڈنس کے فال کے فارٹی سے نہیں کیے بلکہ انہی انواندرا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।